अपने सुनिया सी किवें बयान करी है की कहिए कि वह रस शहद वर्गा है, रस मिश्री वर्गा है, रस गुड़ वर्गा है, रस दुध वर्गा है, किस वर्गा रस है? परमात्मा दे रस दी ते कोई उदाहरण नहीं, वो अपनी उदाहरण आप है। भगत कबीर साहब जी दे उत्ते प्रश्न होया कि बोलो रस पाया है ते दसो, बोल के दसो रस किस तरह का है। ते हुण भगत जी उन्हां लोकां दे सामने चुप हो जांदे ने। अखीरी लोकां वल्लों बोछार करके प्रश्न आ रहे ने, धड़ा धड़ प्रश्न आ रहे ने, ते कबीर साहब अखीरी बोले ने, कहन लगे कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। कहन लगे सजनो अगर एक गुंगे मनुख नू आप मठियाई खाण वास्ते दियो, चंगा स्वादला भोजन खाण वास्ते पेश करो, ते भोजन खवान तो बाद उदे उत्ते प्रश्न करो भी बोल के दस इहदा रस किस तरह का है। हुण उस भोजन का रस गुंगे नू आया ते है, ते आया भी जरूर, इहदे विच कोई शक नहीं, क्योंकि गुंगे दे चेहरे दे उत्ते जिहड़े खुशी दे चिन्ह प्रगट होए, उन्हां चिन्हां तो समझ आ रही है, निशानियां तो समझ आ रही है, इहनू भोजन का रस मिलिया है। पर जे आप चाहो कि गुंगा मनुख जुबान दे नाल बोल के बयान करे कि रस किस तरह का हुंदा है, ते गुंगे दे बस विच नहीं है। रब जी दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां जद कोई रब्बी रस दे नाल भरदा है, ते सच जाणिया जे उहदे पास उस रस नूं पेश करन लग्यां लफ़ज़ रहिंदे नहीं है। अगर वह रस लफ्जा विच पेश हो जांदा है ते फिर उहने रस नूं पाया ही नहीं है। मैं उदाहरण दित्ती सी लफ्जा दे अंदर ते खाधे हुए भोजन दा रस परोस के तुसी दूजे दे सामने पेश करना चाहो नहीं हुंदा। आप किधरे दूर दराडे सैर सपाटा करन वास्ते चले जांदे हो, पिकनिक ते चले जांदे हो, कोई चंगी थां वेखदे हो, रमणीक जगह वेखदे हो, समुंदर दा किनारा है, सवेर दा समा है, घा दे उत्ते त्रेल पई नजर आ रही है, लहरां बणदियां मिटदियां नजर आ रही ने, सूरज दियां किरणां सुनहरी रंग दियां बड़ा मनमोहना जिहा दृश पैदा कर रही ने, यह सारा रस घूमण फिरन दा सूबा दा नजारा तुहानू मिलिया, वो नजारा लफजां दे राही परोस के आप अपने किसी सज्जन मित्र दे सामने बयान करना चाहो तो कि सज्जन नूं लफजां दे राही वह नजारा दिस जाएगा। जो रस तुसी पाया वह रस तुहाडे सुनन वाले श्रोते नूं आ जाएगा नहीं मिलेगा। आम दुनियावी चीजां दा रस लफजां दे राही परोसिया नहीं जांदा, परमात्मा दा रस ते बिल्कुल ही नहीं परोसिया जांदा। परमात्मा जानन दा विशा है, परमात्मा नूं जिन्हें थोड़ा बहुत जानिया है उन्हें रस नूं मानिया है, जिन्हें नहीं जानिया उहदे अंदर ये प्रश्न ही पैदा हुंदा रहिंदा है, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा दा रस भी नहीं, ये कहावतां ने, ये गल्लां ने, परमात्मा ग्रंथां दे श्लोकां विच बंदे, परमात्मा नामी कोई चीज नहीं है। उहदे अंदर इस तरह के बलबले चलते ने, इस तरह के उत्तर प्रश्न उदेड़ गुण उहदे अंदर चलदी है। तो मैरज कर रहा सन लफजां दे भांडे विच परमात्मा दे रस नूं परोस के किसे दे सामने पेश करना बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ही एक लफजां दे बर्तन विच परोसिया जांदा है ते फिर परमात्मा साडे भांडे तो वड्डा नहीं है, साडे बर्तन तो वड्डा नहीं है। जो चीज मेरे भांडे विच आ गई वह भांडे तो वड्डी नहीं है, जो चीज मेरी खोपड़ी विच आ गई मेरी खोपड़ी तो वड्डी नहीं है, जो मेरे लफजां दे बोलन विच आ गया वह मेरे लफजां तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे समझन विच आ गया मेरी समझ तो वड्डा वह किस तरह होया, जो मेरे बोलन विच आ गया मेरे बोलना तो वड्डा वह किस तरह होया। परमात्मा बेअंत है, ना वह खोपड़ी दे प्याले विच आउंदा है मुकम्मल तौर ते समझ विच आउंदा है, ते ना उहदे मिलाप दा रस ही लफजां दे भांडे विच परोसिया जांदा है, उहदा रस भी बर्तन विच आउंदा नहीं है, समाउंदा नहीं है, परमात्मा बेअंत ही रह जांदा है। असीं उहनूं भांडे दे अंदर परोसण दा यतन करदे हां पर वेखदे हां कि बहुत सारा बर्तन तो बाहर ही पिया है, बेअंत पिया है, था पिया है। गुंगे मनुख दे कोल जुबान ते हुंदी है पर गुंगे मनुख दी जुबान दे कोल इह समर्था नहीं हुंदी कि उह लफजां दे उदेड़ गुण कर सके, लफजां नूं जन्म दे सके और लफजां दे राही किसे नूं कुछ समझा सके।
परमात्मा दे राह दे उत्ते चलदा चलदा मनुख एक

0: अवस्था दे अंदर पहुंच के गुंगे वाली हालात विच हो जांदा है। लोग पुछदे ने रब दे मलाप दा रस ते उहदे कोल परोसन दा कोई जरिया नहीं हुंदा, किवें पेश करे कि रस इस तरह दा है, लोग कह देंदे ने पागल है। इस तरह ही कबीर साहब दे नाल होया है। लोगों ने पुछया है कि बयान कर रस किस तरह दा है, ते कबीर साहब कहिंदे ने कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है। ते लोगों ने ताड़ी मार दी, झूठ बोलदा है, पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, सारे लोगों ने एक सुर होके कह दिता है कबीर बौरा है, कबीर पागल है, कबीर बौराना। पर कबीर साहब कहिंदे ने कबीर का मरम राम पहचाना। कबीर दे असली भेद नूं ते उहदा राम जानदा है, परमात्मा जानदा है। ते लोग की जानन कि मैनूं रस मिलिया है ते किस तरह दा मिलिया। गुरबाणी दे अंदर एक होर भी बचन आउंदा है, जे हौ जाना आखां नाहीं कहना कथन ना जाए। जे मैं जान भी जावां परमात्मा तू इस तरह दा है ते आख्या नहीं जांदा। जे हौ जाना आखां नाहीं कहना कथन ना जाए। तू मेरे कहन दे अंदर मेरे कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। जे मैं जान भी लेना कि परमात्मा तू इस तरह दा है, मेरे कहन कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। अज दा ये श्लोक भगत फरीद साहब जी ने जो बख्शिया कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा नूं मिला नहीं सकिया, अज मैं मन नूं रब जी दे नेड़े कर नहीं सकिया। मैनूं जो रस रोज रोज कंत परमात्मा दे नाल मिलन तो बाद मिलदा सी, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न तो बाद मिलदा सी, अज ओह रस नहीं मिलिया। भगत फरीद साहब जी दे श्लोक दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव इस तरह है। एक होर भी बेनती करदा चला, कदों महान रस मिलदा है, जदों छोटे रस वलीन हो जांदे ने चले जांदे ने। या फिर इस तरह कह लो कि छोटे रस मिलदिया वड्डा रस मिलदिया छोटे रस अपने आप चले जांदे ने। बालपन दे अंदर हर बच्चा खड़ौणियां दे नाल खेडदा है, गुड़ियां पटोलियां दे नाल खेडिया जांदा है। पर जद ओ बालपन दी उम्र नूं छड के जवानी दीआं दलहीजां दे उत्ते आण के खड़ा हुंदा है, तो की उदों वी उहनूं खड़ौणियां दी लोड़ पैंदी? सियाणप वधन दे नाल, उम्र दा तकाजा वधन दे नाल खड़ौणे अपने आप छुट जांदे ने, उहनां नूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी। अध्यात्मिक दुनिया दे अंदर, धर्म दे राह दे अंदर जिवें जिवें कोई वड्डा ते उचेरा रस मिलदा है, दुनियावी रस अपने आप छुटने शुरू हो जांदे ने, मदम पैने शुरू हो जांदे ने। अगर कोई कामी है, क्रोधी है, निंदक है, लोभी है, तरह तरह दे बुराई दे रस दे नाल भरिया है, ते ओ ए गल कहिंदा है कि मैं रब्बी रस नूं भी पा लिया है, बिल्कुल कोरा झूठ बयान कर रहा है। या ते रब्बी रस है ते या फिर बुराइयां दा रस है। जिथे रब्बी रस आ जांदा है उथे बुराइयां दे रस नूं रहण वास्ते जगह मिलदी कदों है? इह ते अपने आप चले जांदे ने। इस तरह बेनती करा कि जे समझ होवे जो मेरे हाथ दे अंदर चीज फड़ी है एक कौडियां ने, यह भी समझ होवे जो मेरे सामने चमक दे रहा है एक कोही नूर हीरा है। कोही नूर हीरा हाथ दे अंदर आउंदिया कौडियां नूं छड्डदिया देर नहीं लगदी, अपने आप उह छुट जांदियां ने। वड्डी चीज दे मिलदिया छोटी चीज अपने आप छुट जांदी है, उहनूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी। पर यह समझ होवे कि यह वड्डी है ते यह छोटी है, इन्नी परख जरूर होवे, इन्नी समझ जरूर होवे। वड्डी लग्जरी कार दे मिलदिया छोटी कार अपने आप चली जांदी है, सीस मैल दे मिलदिया ही छोटा कार अपने आप चला जांदा है, चंगा कपड़ा मिलदिया ही खद्दर अपने आप चला जांदा है, चंगा भोजन मिलदिया ही सादा भोजन जवार बाजरा अपने आप चला जांदा है। पर समझ होवे कि इन्हां दोवां विचों चंगा केड़ा है, इन्हां दोवां विचों म्यार नीवा किहदा है, हौला केड़ा है। महान दे मिलदिया ही छोटा अपने आप वलीन हो जांदा है, चला जांदा है। अगर साडे मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली दा रस है ते पूरी तरह भरिया है, ते खिमा चाहवांगा फिर रब्बी रस नूं अजे नहीं पाया। जिस दिन रब्बी रस दीआं बूंदां मिलणगीआं इह अपने आप ही जाने शुरू हो जाणगे, छुटने शुरू हो जाणगे। इहनां नूं कहण दी लोड़ नहीं कि तुसीं चले जाओ, छड्डण दी लोड़ नहीं, अपने आप छुट जाणगे। पर शर्त यह है कि इन्हां दी जगह दे उत्ते कोई ना कोई दूसरा आना चाहिदा है और आना चाहिदा है महान आना चाहिदा है वड्डा तां इह राह छुट्टणगे। गरीब नवाज की बाणी का एक बचन मैं तुहाडे सामने रखदा चला। पातशाह कहिंदे ने रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास। कहन लगे रस सोइना तू ते सोने नू अपने शरीर दे उत्ते पा के इथों भी रस लै रहे कड़ा पाया मोटा लोकां नू विखा रहे कांटे पाए ने मोटे लोकां नू विखा रहे शिंगार तकरीबन तकरीबन लोकां नू विखाउण वास्ते रह गया। खिमा चाहवांगा शिंगार लोकां दी नुमाइश वास्ते रह गया। शिंगार हुंदा सी केवल पति दी खुशी वास्ते पर अज लोकां दी नुमाइश वास्ते पति दी खुशी वास्ते नहीं। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ इस तरह दे ने जो तू सोना अपने तन दे उत्ते गहनियां दे रूप विच हंडा के रस लै रहा है सोने विचों तेनू रस मिल रहा है रूपा चांदी विचों रस मिल रहा है कामन कामन मैंने औरत औरत विचों रस मिल रहा है रस रूपा रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास तुंते इथों भी रस लै रहा है कि थोड़ा जिहा परफ्यूम महंगा लैके अपने तन दे कपड़िया दे उत्ते ला लिया ते इहदे अंदर ही फुली जा रहे हैं अहंकार करी जा रहे हैं। परमल की वास किनू कहिंदे ने सुगंधी नू चंदन की महक नू। अगर तू महक का छुड़काव कर लिया है तू इन्ने दे अंदर ही अपने आप नू वड्डा समझ रहे हैं दूजे नू छोटा समझी जा रहे हैं। रस परमल की वास रस घोड़े कारा चंगियां तेरे कोल ने घोड़े चंगे तेरे कोल ने रस शेजा मंदर मंदर घर भी चंगा तेरे कोल ते घर दे अंदर शेज भी मखमली तेरे कोल। आखिया रस घोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास ये सारे रस तेरे कोल ने इते रस शरीर के कह घट नाम नवास दस परमात्मा दे नाम दा रस तेरे अंदर नवास करे किथे टिके किथे। जिथे टिकना सी ओ जगह तू खाली कीती नहीं परे हुए बर्तन दे अंदर किसे नू कहिए होर पदार्थ पा होर भर किवें भरेगा तुहाडी थाली भोजन दे नाल पहले ही भरी पई है उपरों होर कौके दे विच पाई आ किथे अगला पावेगा। अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा अंदर समाउण दी ते जगह है नहीं अंदर टिकन दी ते जगह है नहीं। इन्ने रस तेरे अंदर ने वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं विलीन कर इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर इक दिन आएगा यह सारे रस चले जाणगे परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने लड्डू जलेब मठियाईयां मिठे दी गल मैं करनी उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो लंगर वरताउण वाला लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਲੇਬ ਪਏ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਅੱਧ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਬਣਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਰਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਰਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਜ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਰਸਾ, ਆਣ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਣ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਖੇ ਲਾਥੇ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਾਣ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਖੀਵਾ ਕਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਰਸ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੂਣਾ ਹੈ, ਰਸ ਚਟਪਟਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਮਕੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਵੀਕ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਢੋ, ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਬਣੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਰਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਰਸ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਭਜਨ ਕਰੋ ਰਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। कीर्तन आप अज सुन रहे हो ते अज दे सुने हुए कीर्तन दा रस की कल नू जाके मिलेगा। कथा तुसी ऐस वक्त बह के दरबार विच सुन रहे हो ते की हुण दी कीती कथा दा रस आउण वाले तीन दिन बाद बनेगा। अगर तुहानू रस कथा विचों आ रहा है ते हुणे आ रहा है, नहीं आ रहा ते इहदा रस कल भी नहीं आएगा। अगर कीर्तन सुनदिया सुनदिया हुण रस नहीं बनिया, कल नू नहीं बनेगा। बाणी पढ़द्या पढ़द्या हुण रस नहीं बनिया, कल नहीं बनेगा। भजन बंदगी करद्या करद्या रस बनना चाहिए है नालो नाल, नहीं बनिया ते फिर कदी भी नहीं बनेगा। अगर भोजन पक्का होवे, थाल दे अंदर परोसिया होवे, परपिया होवे साडे तो दूर, ते उस भोजन दा रस जुबान नू नहीं मिलदा। भावे ओ भोजन किन्ना स्वादला होवे, किन्ना चंगा होवे, पर थाल विच परोसिया है, दूर पिया है, उहदा रस तुहानू की समझ आई कि भोजन खट्टा है, भोजन मिठा है, भोजन कौड़ा है, नहीं जान पाए उहदा रस की। भजन भी अगर मन तो दूर रहा, गुरबाणी मन तो दूर रही, कथा मन तो दूर रही, कीर्तन मन तो दूर रहा, ते दूर पै भोजन का रस भी नहीं मिलता, दूर पै भजन का रस भी नहीं मिलता। दोबारा मैं इन्हां लफ्ज़ां नूं दोहरा दिया, भोजन जुबान तो, भोजन मुख तो दूर है, वह भोजन सदा कुछ सवारेगा नहीं, जिहड़ा बाहर पिया है उहदा रस बनेगा भी नहीं। जो गुरबाणी उपदेश साढ़े मन के बार बार है, मन विच ज्ञान है, ना मन नूं तृप्त करेगा, ना रजाएगा, ना उहदा रस बनेगा, जो मन तो बार बार है। तो बेनती करदा चला, भगत फरीद साहब कहिंदे ने, अज ना सुती कंत सिओ, अज मैं अपने कंत, कंत मैंने पति, पति मैंने परमात्मा, पति परमात्मा दे मलाप दा रस नहीं जान पाया। कुछ सत्संगी नवे आए, गल नूं मैं दोबारा दोहरा रहा, सूफी संत तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब मनदे ने, अपने आप नूं महबूबा मनदे ने, ते फिर लफज भी उस तरह दे वरतने पैणगे। जे परमात्मा प्रेमी है, अपने आप नूं प्रेमिका दी जगह दे उत्ते मन्या गया, ते फिर लफज भी उस तरह दी परोणे पैणगे। भगत जी कहन लगे, मैं अपने कंत परमात्मा दे नाल मिलन दा रस अज नहीं माण पाया, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा सारा दिन मन बेचैनी विच रहा, चिड़चिड़ापन रहा, क्रोध वार वार मन विचों जन्म लैंदा रहा, क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी अज उह रस नहीं मिलिया। ते जिहड़े रोज रोज दे अभ्यासी ने, उहनां नूं मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। वाकई मन खिजिया रहिंदा है अगर किसे दिन मजबूरी दे कारण गुरुद्वारे ना आ सको, रोज आउण वाले एक दिन ना आ सकन मन खिजिया रहिंदा है, रोज सुनन वाले एक दिन ना आ सकन मन विच क्रोध बनदा रहिंदा है, चिड़चिड़ापन रहिंदा है, इस तरह रहिंदा है जिवें कोई कीमती पदार्थ अज मेरे कोलों गवाच गया होवे, कोई वस्त गुम होई होवे। कहन लगे, जाए पुछो दोहागणी तुम क्यों रहन बिहाए, मैं उन्हां दुहागणा नूं साखतां नूं मनमुखां नूं पुछदा कि तुहाडी जीवन रूपी रात किवें गुजरदी, जिन्हां ने कदी रब नूं चेते कीता ही नहीं, भुल के जुबान दे उत्ते वाहिगुरु जाप लियांदा ही नहीं, परमात्मा दे गुणां दा जाप कीता ही नहीं, उन्हां दी जीवन दी रात किवें गुजरदी है, भारी गुजरदी है, बेचैनी विच गुजरदी है। एक तंदरुस्त मनुख ते एक बीमार मनुख, इन्हां दोवां दी रात दे अंदर वड्डा अंतर है। बीमार सारी रात करवटां बदलदा रहिंदा है, हौके भरदा रहिंदा है, जागदा रहिंदा है, बेचैनी विच रहिंदा है, ते तंदरुस्त लम्मियां तान के कूक नींदरा विच सुत्ता मगन नजर आउंदा है। इन्ना ही फर्क है एक गुरमुख दी रात ते एक मनमुख दी रात दे अंदर। रात जीवन है, पूरा जीवन एक रात है, एक रहन के पाहुण तो मैं आए, पूरा जीवन रात है। कईआं दा जीवन बीतदा है, बीतदा है हौके पर्दिया झोरिया दे अंदर, कले कलेश दे अंदर, मन मुटाव दे अंदर, पदार्थ बड़ा है पर मन मुटाव भी बड़ा है। सुख देन वाले साधन पदार्थ ते बड़े ने, लग्जरी कारां ते कोल ने, सीस मैल ते कोल है, कपड़ा भी बड़ा है, भोजन भी बड़ा है, तन दौलत पदार्थ भी बड़ा है, पर नाल दुख भी बड़ा है। जीवन दी रात बीतदी है दुख दी पंड चुक है, ते कईआं दी जीवन दी रात बीतदी है बड़े आनंद दे अंदर, भावें उहनां दा घर छोटा है, कार छोटी है, पदार्थ थोड़ा है, पर आनंदित बड़े ने, बड़े आनंद दे अंदर ने। एक बेनती मैं होर करदा चलां, आनंद दे संबंध विच सुनिया ते है कि आनंद हुंदा है, पर आनंद नूं जानिया किन्निया ने है इहदा जवाब तुसी अपने कोलों आप मंगो कि आनंद नूं जानिया किन्निया ने है। बचपन दे अंदर असी खड़ौणिया विचों आनंद लभण दी कोशिश करदे रहे, खड़ौने मिल गए पर खड़ौणिया विचों आनंद ना मिलिया। मां बाप खड़ौने बदल बदल के देंदे रहे, किसे खड़ौने विचों भी आनंद ना बने। सिजे सिजे बालपन पिछे रह गया ते जवानी अगे आ गई, जवानी दियां दलहेजां ते कदम आ गए। जवानी दे अंदर मन विचों एक आवाज पैदा हुई, पत्नी मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए, पति मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए। जवानी दे अंदर पत्नी मिल गई पर आनंद ना मिलिया, पति भी मिल गया आनंद नहीं मिलिया। मन फिर हवा दी तरह जिवें गुब्बारे हुंदे ने ते गुब्बारे दी परत बड़ी पतली हुंदी, इस तरह बिल्कुल कमजोर गुब्बारे मन तैयार कर करके सानू देंदा रहिंदा है, दलीलां दे अंदर उलझाई रखदा है, अगे अगे दौड़ाई रखदा है। मन ने फिर एक आवाज दिती कि आनंद तां बनेगा जे तेरे घर दे अंदर एक दो बच्चियां दा जन्म होवे। घर दे अंदर दो तियां दा, दो पुत्रां दा जन्म होया, चार पंज छे बच्चियां दा जन्म होया ते आनंद दा जन्म तां वी ना होया। मैं झूठ बयानी नहीं कर रहा, तुसी सारे इस गल तो जाणो कि व्याह कराउण तो बाद आनंद बन जांदा है, तियां पुत्रां नूं जन्म देण तो बाद किसे दे जीवन विच आनंद बणिया। मैं ते कुरज दे कल्पदे होया नूं मिलिया, कोई हजारां विचों इक आनंद भरपूर मिलदा है। चलो फिर मन दी वासना अगे चली गई, मन ने कहा कि हुणे बच्चियां नूं जन्म दिता है, इन्हां दी लालना पालना करना भी मेरा फर्ज है, इन्हां दी लालना पालना कर लेंगा ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाएगा। बच्चियां नूं पालना पोसना शुरू किया, पढ़ाउणा लिखाउणा शुरू किया, सोचिया कि चलो इन्हां दे कारज कर लवां, इन्हां दे विआह कारज कर लवां ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाए। बच्चे पढ़ लिख के डिग्री वाले बन गए, डिग्री होल्डर बन गए, कोई साइंटिस्ट बनिया, कोई डॉक्टर बनिया, कोई वकील बनिया, कोई जज बनिया, बच्चे ते पढ़ लिख गए पर जीवन दे अंदर आनंद अजे भी नहीं। बल्कि की होया, ओ जेड़ी कल्पना सी ओ नाल नाल चलदी चलदी डिप्रेशन दा रूप धारण कर गए, कले कलेश डिप्रेशन दी बीमारी बन गए, इनू हिंदी दे अंदर फोबिया भी कह देंदे ने, फोबिया दी बीमारी बन गए। तो खैर जो मैं बेनती कर रहा सा, बच्चियां दे व्याह हो गए आनंद तां ना बनिया। हुण सारी कारज तेरे फते ने, तियां व्याहियां गईयां, नौवां घर विच आ गईयां, पुत्र व्याहे गए परनाए गए, आप बजुर्ग वार जितने शोभा पा रहे हो, पहला मैं तुहाडे तो खिमा मंग लवां, बाद विच ईमानदारी दे नाल अपने आप नूं पुछो कि तुहाडे जीवन दे अंदर आनंद बन गया। 100 साल दा बिरध बाबा मरण दी शेज दे उत्ते होवे ते कन्न विच जाके प्रश्न करो, बाबा ईमानदारी दे नाल दस के जाई कि आनंद लैके जा रहे हैं या दुख लैके जा रहे हैं। हजारां विचों इक दा जवाब आएगा, आनंद लैके जा रहे हैं। मरण दा मैनू कोई इतराज नहीं है, मैं जीवन गुजारा है, लालसा मेरी बाकी नहीं है, बाकी सब दी तमन्ना होएगी नहीं है, अजे ते जीवन होर चाहिदा सी, वेख्या ही की, वेखण दे दिन होण आए सन, सारी उम्र ते करदे ही रहे, वेखणा ते होण सी। तो जीवन पूरे दा पूरा बीत जांदा है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ना बुढ़ापे दे अंदर आनंद बनदा है। हुण मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, आनंद नूं प्राप्त करन वास्ते कोई एक उम्र नहीं है। ए नहीं है कि बालपन दे अंदर जिवें खड़ौने मिलने ने, जवानी विच नहीं, जवानी विच ही विआह कारज हुंदा है, बालपन विच नहीं या बुढ़ापे विच नहीं। बुढ़ापे विच ही नौवां ते तीआं दो त्रिआं पोतरिआं वाला बनदा है, बालपन विच नहीं। इह ते होया ना उमर दा तकाजा कि किहड़ा कम किस उमर दे अंदर होना है, उमर दे लिहाज नाल होना है, पर आनंद उमर दे लिहाज नाल नहीं मिलदा। आनंद मिल जाए ते किसे नूं बालपन विच मिल जाए, मिल जाए किसे नूं जवानी विच मिल जाए, मिल जाए बुढ़ापे विच मिल जाए, ते ना मिले ते तिन्ने पैरे दे बीत जांदे ने, आनंद नूं मिलदा ही नहीं है, ना बालपन दे अंदर, ना जवानी दे अंदर, ते ना बुढ़ापे दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जाए पुछो दोहागनी मैं उन्हां दोहागणां नूं पुछदा प्रश्न करके तुम क्यों रहण बिहाए तुहाडे जीवन दी रात किस तरह बीती है दुब्बर रात पारी रात किस तरह बीती तुसी पूरे जीवन दे अंदर कदे वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता ही नहीं ते जद पूरा जीवन बीत गया कदी आप चौपाई पढ़ी नहीं सुखमणी साहब दे नाल जुड़िया नहीं पंज बाणियां दा नेम नपाया नहीं वाहिगुरु मंत्र जुबान ते लियांदा ही नहीं कदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आया ही नहीं ते दुनिया दा दस्तूर वेख्या है जद ओह मरदा है डेड बॉडी नूं चुक के फिर ओदे कोल ग्रंथी सिंह नूं कह देंदे ने बा हुकम ज्ञानी जी इहदे कोल बह के ना हुण लगातार तुसी सुखमणी साहब दा जाप करना है पूरा जीवन आप मिलिया सी सुखमणी दा जाप जपन ले पूरे जीवन दे अंदर ते पता नहीं कि सुखमणी की हुंदी है ते मरण तो बाद हुण ग्रंथी सिंह दी सुखमणी इहनूं पार करेगी पूरे जीवन दे अंदर आप ते भुल के कदी इहने जुबान ते वाहिगुरु मंत्र दा जाप लियांदा नहीं ते मर गया ते हुण उहदे कोल बह के वाहिगुरु वाहिगुरु करो जी ओह इहनूं पार करेगा हुण दूसरे दा कीता इहनूं पार करेगा मेरा मतलब यह नहीं है कि ओदे कोल बह के रोना तो नहीं चाहिदा है या कथा कीर्तन या बाणी दा जाप ना होवे होना चाहिदा है पर उन्हें आप भी ते जीवन विच कुछ कीता होवे ना मुक्ति उन्हों तां मिलेगी जे उन्हें आप कुछ कमाया है पहला मौत तो पहला पहला मन मुक्त होया है ते तां मरण तो बाद जुना तो मुक्ति ते मरण तो पहला पहला वह बंदरां दे अंदर बजा रहा है ते हुण मुक्ति उन्हों मिले किवें हुण वह बंदरां तो मुक्त होवे किवें तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैं उन्हां दोहागणां नूं मन मुखां नूं पुछदा कि उन्हां दा जीवन किवें बीतिया जिन्हां ने सारी उम्र दे अंदर कदी परमात्मा दे नाल अपने मन दी सांझ पाई नहीं इस श्लोक थोड़ा जिहा गहरा सी मैं श्लोक नूं लै के तां तुहाडी सेवा दे अंदर कुछ बेनतियां रखण दा नमाना यतन कीता कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए अगर बारी बारी अर्थ करोगे ते कुछ होर बनदे ने गहराई विच चले जाओ ते अर्थ सही रूप दे अंदर उगड़ के तुहाडे सामने आ जाणगे भगत फरीद साहब जी कहना की चाहुंदे ने अंग मुड़े मुड़ जाए मन विच बेचैनी रहिंदी उस मन विच जिहड़ा मन रोज रोज जुड़दा है पर एक दिन किसे मजबूरी दे कारण नहीं जुड़ पाया किसे कारण करके अज सांझ नहीं बनी परमात्मा दे नाल मन दे अंदर चिड़चिड़ापन रहा जाए पुछो दोहागणी तुम क्यों रहण बिहाए उन्हां दोहागणां दा जीवन किन्ना दुखी होएगा किन्ना बजर ते भारा होएगा उन्हां दे जीवन दी रात किस तरह बीतदी है जिन्हां ने कदी पूरे जीवन रूपी रात दे अंदर परमात्मा पति नूं चेते नहीं कीता परमात्मा दे नाल सांझ बनाउण दा यतन ही नहीं कीता तो इह सी भगत फरीद साहब जी दे मुबारक बचन जिन्हां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां आप संगत दे सामने करन दा नमाना यतन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी रहमत करन सबना दे मना दे अंदर गुरमत ज्ञान दी बख्शिश और अज्ञानता दा हनेरा दूर करन दी कृपा करन
1: सहुरे ढोई ना लहै पीए नाही थाओ फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागन नाओ सोहरे पीए कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनो, चल रही लड़ी वार कथा विचार आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो। भगत फरीद साहब जी की मुबारक बाणी विचों अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, सहुरे टोई ना लहै पेये ना ही थाओ, दो थावां दा जिक्र भगत फरीद साहब ने बाणी विच फरमाया, एक सौरा घर ते दूसरा पेका घर। कहन लगे जिसनू सहुरे घर दे अंदर भी टोई ना मिले, टोई दा मतलब सहारा ना मिले, रहन वास्ते जगह ना मिले, पेके घर दे अंदर भी रहन वास्ते जगह ना मिले, वो जीव आत्मा आखर जाए किधर? क्योंकि बसियां जन्म लेंदियां ने, उम्र दा कुछ हिस्सा गुजार देंदियां ने पेके घर दे अंदर, ते बाकी दा उम्र दा हिस्सा गुजारिया जांदा है सहुरे घर दे अंदर। जिदे पास पेका घर भी नहीं सौरा घर भी नहीं तो फिर आखर वो जाए किथे? कहन लगे सहुरे टोई ना लहै, हुण इस रमज नूं थोड़ा जिहा समझण दा यतन करियो। सौरा घर बयान कीता है परमात्मा दे घर नूं, पेका घर बयान कीता है ऐस लोक नूं। साडी आत्मा नूं इह लोक भी छड्डना पिया, पर लोक दे अंदर परमात्मा पति दा घर मिलिया ना, ते फिर ओ आत्मा जाएगी किथे? ए शरीर आत्मा नूं छड्डना पैंदा है। असी तीन चीजां दा सुमेल चल रहे हां, साडे पास तन है, साडे पास मन है, ते तीसरी साडे पास आत्मा है। तिन्हां चीजां दा सुमेल ही असी चल रहे हां। चलो मैं आरंभ दे अंदर एक होर बेनती करदा चलां, तन दा अपना फल, मन दा अपना फल, ते आत्मा दा अपना फल, वखो वखरे तिन्ना दे फल ने, और वखरियां वखरियां ही तिन्ना चीजां दियां गुलामियां ने, वखरे वखरे बंधन ने। तन दे बंधन वखरे ने, मन दे बंधन वखरे ने, आत्मा दे बंधन वखरे ने, तिन्ना दे रोग वखो वखरे ने। खैर जो मैं बेनती कर रहा सां, साडा तन तन नूं फल लगदा है औलाद पैदा करनी। तन कोलो तन ही पैदा हुंदा है, होर कुछ भी नहीं। तियां दा जन्म हुंदा है, पुत्रां दा जन्म हुंदा है तन करके। मन नूं फल मिलदा है ज्ञान दा, और जद मन नूं ज्ञान दा फल मिल जांदा है, फिर इस तों अगे चल के आत्मा नूं फल लगदा है रब्बी रस दा, परमात्मा दे रस दा। जिस मनुख दे मन नूं ज्ञान दा फल नहीं मिलिया, उहदी आत्मा नूं रब्बी रस दा फल भी नहीं लगेगा। शरीर दे संबंध विच कोई प्रूफ पेश करना, कोई सबूत पेश करना कि शरीर हुंदा है, शरीर इस तरह दा हुंदा है, कोई लोड़ नहीं, क्योंकि शरीर अपना भी वेख रहे हैं, ते शरीर प्रकृति दे अंदर दूसरियां दा भी वेख रहे हैं। मन दे संबंध विच भी सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि मन दे संबंध विच असी रोज रोज गल करदे नजर आ रहे हैं। अज मेरा मन मनदा सी मैं कुछ खा लवां, मैं बना के खा लिया। मेरा मन करदा सी गुरुद्वारे चला जावां, ते मैं आ गया। मन करदा सी अज गुरुद्वारे नहीं जाना, ते मैं नहीं आया। मन करदा सी अमृत वेले उठा, मैं उठ पिया। मन करदा सी सुता रवां, ना उठा, मैं नहीं उठिया। मन दी गल तुसी वार वार करदे रहिंदे हो, मन दी चर्चा वार वार रसना दे उत्ते आउंदी रहिंदी है। तन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं, मन दा सबूत पेश करन दी लोड़ नहीं। मन महसूस करन दा विशा है, ते तन इना दो अखां दे नाल वेखन दा विशा है। नंबर तीन दे उत्ते बचदी है आत्मा। आत्मा ना ते वेखन दा विशा है, इना दो नेत्रां दे नाल आत्मा दिसदी नहीं है। आत्मा ना मन वांग महसूस करन दा विशा है, आत्मा है केवल विश्वास दा विशा। हुण इह महसूस भी नहीं हुंदी, इना दो अखां दे नाल दिसदी भी नहीं। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
0: ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਯਾਫਤਾ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸੁਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ, ਵੇਖਣਾ, ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਹੁਰੇ ਟੋਈ ਨਾ ਲਹੇ ਪਈਏ ਨਾ ਹੀ ਥਾਉ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕੇਗੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਭਟਕੇਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰੂਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। तो मैं इतने लंबे समय तो पटकरिया सी, तेरे तो बड़ा दूर सी, कदी पशु दा शरीर, कदी परिंदे दा शरीर, कदी नभचारी, कदी थलचारी, कदी पानी दे अंदर दा जीव पटकदा रहा। आत्मा मेरी शरीर बदलदी रही, जामे बदलदी रही, मैं पटकदा रहा। तो अज दे महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, सहुरे टोई ना लहे। रब दे घर दे अंदर तेनू सहारा नहीं मिलिया, क्योंकि उस तरह दा इस जन्म दे अंदर रह के तू कुछ कीता नहीं है कि रब जी दे दर दे उत्ते बहन दा योग बन जाए, उस बराबर बन जाए, योग बन जाए, उते यतन प्रयतन तू कीता नहीं। रब ने एक बकायदा नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है, उस प्रोसीजर विचों निकल के ही परमात्मा दा दर मिलता है, निकलन तो बगैर दर नहीं मिलता। और इस सिस्टम ही कल्ले परमात्मा ने नहीं बनाया, तुसी भी बनाया है, इस दुनिया दे अंदर भी है। अगर एक जज दी सीट खाली होवे, वैकेंसी निकले, भई एक जज नियुक्त कीता जाना है, तुसी अपने अपनी एप्लीकेशन दे सकदे हो, तुसी फार्म भर सकदे हो, जज दी एक सीट खाली है। हुण जज दी सीट वास्ते कोई रिक्वायरमेंट भी तो होएगी ना, कि इहदी तालीम इन्नी चाहीदी है, पढ़िया लिखिया इन्ना चाहीदा है, इहनूं वकालत दा तजर्बा इन्ना चाहीदा है, कोई एप्लीकेशन भरे दूसरा नहीं। ते हुण जे कोई एक अनपढ़ बंदा, अंगूठा छाप बंदा जाके धरना दे कि मैं दूसरे नालों उच्चा लम्मा हां, सुंदर हां, सुनखा हां, जज की सीट ते मैनू क्यों नहीं बिठाउंदे? ते जज की सीट ते बहन वास्ते बकायदा एक तालीम निर्धारित की गई, नियुक्त की गई। वो तालीम तेरे कोल होएगी तो बन जाएगा, नहीं होएगी नहीं बनेगा। बड़ी सादी जी उदाहरण, अगर उस सिस्टम विचों निकल रहा है ते तेनू कोई जज बनाउन वास्ते सोच सकता है, तू सिस्टम विचों निकलिया ही नहीं है, तालीम तेरे पास ही नहीं है, तजर्बा तेरे पास ही नहीं है, तेनू जज बनाएगा कौन? परमात्मा दे चरणा विच बहन वास्ते भी बकायदा एक नियम तैयार किया है परमात्मा ने। तेरा मन पवित्र होना चाहिदा है, तेरे मन दे अंदर द्वैत वैत नहीं होनी चाहिदी, ईर्षा निंदा चुगली आदि बुराइयां तेरे मन दे नेड़े तेड़े भी ना होन। काम क्रोध जह परसे नाहिन तेह घट ब्रह्म नवासा। काम क्रोध ते तेरे मन नू कदी छूया भी ना होवे, परसिया भी ना होवे। तो हुण अगर ते नियम साडे उते लागू हुंदे ने तां ते आत्मा परमात्मा दे देश दी वसनीक बन सकदी है। अगर ये नियम मेरे उत्ते लागू नहीं होंदे ते फिर आत्मा वसनीक नहीं बनेगी, फिर आत्मा भटकदी रहेगी, जूना दे अंदर भटकदी रहेगी। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे, सहुरे टोई ना लहे। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, आखिर सहुरे घर नूं की दिक्कत है, परमात्मा नूं की दिक्कत है, वह साडी आत्मा नूं अपने घर दे अंदर जगह देंदा क्यों नहीं? परेशानी इहदे विच की है, दिक्कत कित्थे है? एक नियम है कि साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल, परमात्मा दा संबंध जिउंदियां रूहां ते जिउंदियां आत्मावां दे नाल है। किसे दा कोई परम मित्र होवे, या कोई मां बाप होवे, या कोई भैण भाई होवे, जां कोई पति पत्नी होवे, और बड़ा नेड़े दा रिश्ता भी ते दिल दी सांझ रखण वाला मित्र भी, उह शरीर करके चला जाए, चलाना कर जाए, आपां उहदे तन नूं चुक के मरगट दे अंदर लै के चले जाने आ, उहनूं संस्कार करन वास्ते अपने घर दे अंदर, ना उहनूं दफनाउने आ ते ना संस्कार करने आ। ते जे कोई सानूं इह गल कहे वी तुहाडे घर दे पिछले पासे जगह खाली पई है, अपने गार्डन दे अंदर इहदा संस्कार क्यों नहीं कर देंदे? अपने घर दे पिछले पासे खाली जगह पई, उत्थे इहनूं क्यों नहीं दफना देंदे खड्डा कढ के? असी एक ही जवाब देंगे, घर जिउंदिया वास्ते हुंदा है, घर मुरदिया वास्ते नहीं है। मुरदिया वास्ते बकायदा शमशान भूमिया बन गई, मरगट बन गए, जिउंदे शरीरां वास्ते घर ते मुरदिया वास्ते मरगट, मुरदिया वास्ते मड़िया, मुरदिया वास्ते शमशान भूमि। साडा संबंध जिउंदे शरीरां नाल है, असी जे चाहुंदे आ कि साडा घर मुरद घाट ना बने, साडा घर शमशान भूमि दे बराबर ना बने, तो परमात्मा भी चाहुंदा है मेरा घर मुरद घाट ना बने। असी जिउंदे शरीरां नूं तरजीह देने आ, परमात्मा जिउंदियां आत्मावां नूं तरजीह देंदा है, जिउंदियां रूहां नूं तरजीह देंदा है। असी अक्सर एक बोल बोल देने आ ना कि फलाणे दी जमीर मर गई है, मरी जमीर वाले नूं परमात्मा अपने घर दे अंदर बना क्यों देवे? उन्हें अपने घर नूं कोई शमशान घर बनाउणा है? जे तुसी राजी नहीं कि अपने घर नूं शमशान घर ना बनाईए तो परमात्मा भी राजी नहीं। वह कहिंदा मैं भी शमशान घर नहीं बनाउणा, मेरे कोल भी आ ते पूरा पवित्र होके आ, पूरा अपनी जमीर नूं जिंदा रख के आ अगर मेरे कोल आउणा है। तो जो आत्मा मुर्दी हुंदी है, आत्मिक तौर ते जो मरिया हुंदा है, अपनी जमीर दी आवाज नूं जो नहीं सुनदा, वो फिर वार वार जूना दे अंदर ही भटकदा है। होर जाए किथे, उहनूं शरीर बदलने पैंदे ने, जूना बदलनियां पैंदियां। तो फरीद साहब इशारतन हुक्म कर रहे ने, कहन लगे ना ते सहुरे घर दे अंदर टोई मिली रब जी दे घर दे अंदर, ना पेके घर दे अंदर ही रहण वास्ते थां मिलिया। शरीर बुढ़ा होया, शरीर नूं मौत आई, किसे नूं कहिए तेरा बड़ा प्रेमी सी इहनूं घर दे अंदर रख छड, कौन रखेगा? मुर्दे नूं की करोगे रख के? रखना भी चाहोगे किस काम आएगा? पेईए ना ही थाओ, ते फिर जिस परिवार वास्ते, कुटुंब कबीले वास्ते मनुख अपनी जमीर नूं मुर्दियां करदा है। मेरा मतलब यह नहीं कि परिवार नूं छड्ड देना है, परिवार की लालना पालना नहीं करनी। गुरु नानक साहब ने सिखाया रहना संसार विच, रहना परिवार विच, ते जे तेरे उते दो चार पंज बच्चियां दी कोई परमात्मा वल्लों जुम्मेवारी आई है ते फिर उस जुम्मेवारी नूं भी तू नभाउणा है, ते नभाउणा भी चंगे तरीके दे नाल है। परमात्मा वल्लों मिली सेवा समझ के जुम्मेवारी नूं करना भी है, नभाउणा भी है। तो अर्ज मैं कर रहा सा, रब जी ने ते नहीं कहा कि परिवार पालदा पालदा आत्मिक मौत ही कबूल कर, परिवार पालदा पालदा जेहनी जमीरी तौर दे उते मुर्दा बन जा। तो बेनती मैं ये कर रहा सा कि परमात्मा दे देश केवल जिउंदियां आत्मावां जिउंदियां रूहां नूं जगह है, मुर्दियां रूहां नूं नहीं। मुर्दियां रूहां नूं शरीरां दे अंदर भटकना ही पैंदा है। जिन्हां वास्ते असीं अपनी रूह नूं मुर्दा कीता है, अगर उन्हां नूं परिवार वालियां नूं मर जाण तों बाद मुर्दे दा सुपना भी आ जाए ना, सुपना, ते परिवार वाले फिर पंडतां पांध्यां दे कोल पखंडियां दे कोल चलदे ने, जाके कहिंदे ने जी साडे घर दा फलाना फलाना मैंबर मर गया सी ते अज साडे सुपने दे अंदर आया। परिवार दा ते इन्ना के साडे नाल, मोह इन्ना के साडे नाल। जिउंदे जी अगर जवान पति घर विच नहीं आया, कुदरती लेट होया है, ते पत्नी नूं इस गल दा फिक्र बनदा है भी समा काफी हो चुका है, आया क्यों नहीं? जवान भैण भी फिक्रमंद हुंदी है भाई आया क्यों नहीं, मां भी फिक्र विच रहिंदी है पुत्तर आया क्यों नहीं, पिता भी फिक्र करदा है कि धी नहीं आई, पुत्तर नहीं आया, आखिर कारण की है? जिउंदे जी जो इंतजार करदे रहिंदे ने कि लेट होया है आया क्यों नहीं, मरण तो बाद वो इंतजाम कराउंदे ने कि इहदा हुण सुपना भी ना आवे, इहदी याद भी ना आवे। और ये हकीकत है, मैं कोई अत कथनी तुहाडे सामने बयान नहीं कर रहा। फिर अपने घर दे सामने धागे बनवाउंदे ने, उपा यतन कराउंदे ने पखंडियां दे कोलों पंडतां दे कोलों, इहदा सुपना भी नहीं आउणा चाहीदा, इह साडे ख्यालां विच भी ना आवे। इतनी असलियत समाज दी खोल के गुरबाणी साडे सामने रख रही है, सानू ना समझ आवे ते साडी अपनी कमी है, गुरबाणी दा दोष इहदे विच नहीं है। तो खैर कह रहे ने भगत फरीद साहब जी, सहुरे टोई ना लहे पेईए ना ही थाओ, पिर वातड़ी ना पुछे। पिर मैंने पति, वातड़ी मैंने वात लैने, खबर लैने। पति परमात्मा तेरी वात पुछदा नहीं। तन तन मैंने जीव इस्त्री, सुहागण लाओ हे जीव इस्त्री, तू अपने आप नूं ना देई रख के मैं सुहागण हां। पति दे नाल तेरा मेल जोल नहीं, पति दे नाल प्यार नहीं, पति दे नाल बहना उठना नहीं, पति दे नाल बोल बाणी नहीं, पति दी चार दवारी विच नहीं, पति दी मान मर्यादा विच नहीं। ते फरीद साहब कहन लगे गल्लां दे नाल सुहागण बनी रहे, कौन रोक सकदा है तेनू कि तू अपने आप नूं सुहागण ना कह। पर सुहागण होना गुणा दा नां है, केवल लिबास दा नां सुहागण नहीं है। फिर मैं याद करावा, यह उपदेश इकलियां भैणां वास्ते नहीं है, औरत जामे लई नहीं है, गल परमात्मा दी आत्मा दी चल रही है। इत्थे सुहागण मर्द भी है, सुहागण औरत भी है, सब लई बराबर उपदेश है। अगर मेरे कोल धार्मिक लिबास है, सुहागण दा लिबास है, पर मेरा पति मेरे घर दी चार दवारी विच नहीं ते ओ कादी सुहागन होए। जिस पत्नी दा पति घर विच नहीं शेज उत्ते नहीं ओ भावे सूहे नाभी रंग दा लिबास पाए चूड़ा पाए कांटे पाए लख शिंगार बनाए की काम आउंदा है। किस अर्थ है ਇਹ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮਨ ਕਾਮਨ ਮੈਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਨ ਪਉ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੰਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਕੰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਬਾਸ ਲੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਬੈ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ। ਕਾਜਲ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੋਵੇ ਸੁਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖੁੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੰਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਲਿਪਸਟਿਕ। ਆਖਿਆ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਬੈ ਕੇ ਸਾਜਿਆ, 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਔਰਤ ਦੇ 16 ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, 16 ਹੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 16 ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅੰਜਨ ਸਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। 16 ਕੀਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੰਤ, ਜੇ ਤੇ ਕੰਤ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਕੰਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਹਰ ਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਅਜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ। ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਉਕਤੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਠੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ 14 ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ 21 ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ 21 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮਤ ਵਖਿਆਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲਨ, ਸੋਲਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ

यदि गई कथूरी गंद जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाए फरीदा कित्ती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वान दुख

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਬਾਲਪਣ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਲਪਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਪਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਲਪਨ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਬੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਇਆ ਕੀ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੋਬਣ ਮੈਨੇ ਜਵਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤਾਈਏ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੁਕਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਵਾਨੀ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕਣ ਦਾ ਲੋਕ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
पर कदों रुकदी है, चली जांदी है। परमात्मा दी नेत दे मुताबक आउणी सी आई है, परमात्मा दे अटल नियम दे मुताबक इन्हें जाना है और जाना ही जाना है, इन्हू रोकण दा कोई उपाय नहीं। वैसे चलो मैं मुखसर बेनती रखदा चला, इन्हां तिन्नां पैरां विचों मनुख दा प्यार सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही, लगाव सब तो ज्यादा है जवानी दे नाल ही। किसी नूं उमर पुछो किन्नी है, उमर कटा के बयान करदा है, 60 वाला, 50, 50 वाला, 40, 40 वाला, 30, उमर कटा के बयान करदे ने। अंदर जो सोच कम कर रही है कि उमर वड्डी दसन दे नाल कहणगे वडेरा हो गया, बुढ़ा हो गया। वाला दा रंग चिट्टा दिसन दे नाल लोग कहणगे बुढ़ा हो गया। ना वाला दा चिट्टा रंग ही रहे ते उमर भी छोटी कटा के झूठ बयान करके दस दो, लोकां दी समझ विच ही आवे कि अरे जवान है। पर कईयां दा तुरन दे अंदाज बदल जांदे ने, चाल बदल जांदी है, चाल ही दस रही है बुढ़ा है, पर वो कबूल नहीं करदा मैं बुढ़ा। कईयां दा बहना उठना, चेहरे दियां चरूड़ियां, अंग अंग उच्ची आवाज दे के कह रहे है तू बुढ़ा है, पर वो मानता नहीं है कि मैं बुढ़ा। खैर मेरा विशा नहीं, किसी वक्त मैं फिर वजाहत करांगा। जवानी बीत जांदी है, चाहे नू चंगी बता लो चाहे मंदे तरीके दे नाल बता लो, पर वेखना है कि मैनू जवानी दे अंदर मिलिया की ते मेरे कोलों जवानी दे अंदर गया की है। जद आप पूरी ईमानदारी दे नाल बह के विचार करोगे कि जवानी विच पाया की ते गवाया की, जवाब तुहानूं मिल जाएगा गवाया बहुत कुछ है ते पाया कुछ भी नहीं है। जे पाया है ते बड़ा थोड़ा पाया है, बहुत थोड़ा पाया है। एक बेनती मैं होर करदा चला, जेब दे अंदर तन दा होना काफी नहीं, ए भी पता होवे मैं तन दे के इहदे बदले विच की खरीदना है। तन दे बदले दे अंदर कौड़े, अति कौड़े जहर वर्गे पदार्थ मार्केट विचों मिलदे ने, ते तन दे बदले मिश्री शहद भी बाजार विचों मिलदे ने। कड़वाहट मिलदी है तन दे बदले, मिश्री मिठास मिलदी है तन दे बदले, तन दे बदले जान लेवा चीजां मिल जांदियां ने, तन दे बदले तंदुरुस्ती देने वाले पदार्थ दवाइयां चीजां मिल जांदियां ने। तन दे बदले तुसी अपने मन नू बेचैन कर सकदे हो, तन दे बदले थोड़ा जिहा चैन ते शांति नू भी बिहाजिया जा सकदा है। तन नू पब्बां दे अंदर, क्लबां दे अंदर, वैसिया द्वारे दे उत्ते, अयाशी बदमाशी दे अड्डियां दे उत्ते खर्च करो तो मन नू बेचैनी मिलेगी, चैन ते नहीं। तन नू गुरु कारजां दे हित, परउपकार दे हित, चैरिटियां लई खर्च करो तो तन दे बदले चलो ज्यादा नहीं मामूली किनका मात्र शांति ते मिलेगी ना, लोकां दीआं इह असीसां ते मिलणगीआं ना जिन्हां दे भला करोगे, और गुरु की असीस भी मिलेगी क्योंकि दसवंध शुभ कारजां वास्ते खर्च करन दा हुकम है। इत्थे मैं उदाहरण अर्ज कर रहा सां, जवानी, जवानी दे बदले की गवाया ते की पाया, ये अपने गिरवान दे अंदर आप झाती मार के अपने आप ते प्रश्न करके अपने कोलों जवाब मंगो। जवानी दे अंदर की पाया, मैं मुखसर ये भी बेनती करदा चला, काम पाया है जवानी दे अंदर, राम नहीं पाया काम पाया है, ते काम शिखर दा पाया है, राम रंचक मात्र भी नहीं पाया। जवानी दे अंदर पाया है पर शैतान नू पाया है, शैतानियत बड़ी है जवानी दे अंदर, खिमा चाहवांगा, शैतान पाया है भगवान नहीं पाया, और फिर रंचक मात्र भी नहीं पाया। देश विदेश दे अंदर विचरन तो बाद, यह ते मेरा अपना निजी तजर्बा है, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे अंदर जिहड़ी संगत मिलदी है, संगत दे दीदार करन लई मिलदे ने, उन्हां दे अंदर गिणती बहुत ही बजुर्गां दी हुंदी है, जवानां दी नहीं हुंदी। क्यों जवाना दी नहीं हुंदी? क्योंकि जवानी नू शैतानियत तो वेल मिले ते गुरुद्वारे आवे, जवानी नू काम क्रोध निंदा चुगली ईर्ष्या बखीली तो वेल मिले ते गुरुद्वारे आवे। जो कोई जवान आ रहे हो उन्हां नू मेरे वालों उच्चे ची वधाई। तो खैर जवानी दे अंदर पाया है क्रोध धोखा धड़ी अयाशी बदमाशी दे अड्डे होर दुनिया भर दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी जवानी विच,
दूसरे पासे धर्म दे मार्ग दे उते जवानी नू खर्च करके की पाया है। इधर वेखो भई मेरी जवानी दे चार दिना दे अंदर मैं धर्म दी दुनिया विचों की पाया है। ते तुहानू इधरों जीरो मिलेगी, कुछ भी नहीं पाया। ना धर्म दा ज्ञान, ना धर्म दा पेंडा तय कीता, ना शांति बनी, ना सुकून बनिया, ना चैन बनिया, कुछ भी नहीं बनिया। जवानी बीत गई, जवानी चली जाए विकारां दे अंदर। भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने मैनू अफसोस बड़ा है, जवानी चली जाए रब दे प्रेम दे अंदर। भगत फरीद साहब कहिंदे ने मैनू रंचक मात्र भी अफसोस नहीं है। जोबन जांदे ना डरा, कहन लगे जोबन चला जाए कोई डर नहीं है, पर ए वेखना है कि जाए किस दे बदले। तन चला जाए कोई गल नहीं, पर ए भी ते वेखो ना जाए किस दे बदले। जीवन चला जाए, जीवन दी कुर्बानी हो जाए, पर कुर्बानी जिस मंजिल तो कर रहे हो वो मंजिल ही कोई खास ना होवे, आम मंजिल होवे, ते तुहाडी कुर्बानी दा की अर्थ होया, कुर्बानी दा मुल की पएगा। मुल कुर्बानी दा उन्हें पाउणा है जिदे तो कुर्बान हो रहे हो। अगर काम तो कुर्बान हो रहे हो ते की मिलिया है। निंदा चुगली ईर्षा बखीली तो कुर्बानी चली गई, कुर्बानी दिती गई जवानी दी, तो की मिलिया? होके चोरे कले कलेश ए ते मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। धोखा तड़ी अयाशी बदमाशी तो जवानी कुर्बान हुई, तो मिलिया की ये चिंता मिली, कलेश मिलिया, होर कुछ भी नहीं मिलिया। भगत जी कहिंदे ने जवानी चली जाए मैनू डर नहीं है। जोबन जांदे ना डरा, जोबन जा रहा है, जवानी जा रही है, जवानी दी कुर्बानी है, पर कोई डर नहीं है। भगत जी डर किस गल दा है? कहन लगे जे शह प्रीत ना जाए, रब दी प्रीत ना चली जाए, जवानी चली जाए, जवानी दे इवज जवानी नू खर्च करके, जवानी दे बदले जे मैनू थोड़ा जिहा रंचक मात्र परमात्मा दा ज्ञान मिल जाए, परमात्मा दा प्रेम मिल जाए, ते कहन लगे मैं जवानी नू कई वार कुर्बान करन लई तैयार हां, कई वार, एक वार नहीं अनेक वार कुर्बान करन लई तैयार हां। अगली पंक्ति विच भगत जी कहिंदे ने फरीदा कितनी जोबन, किन्ने सारे जोबन, किन्निया ही जवानियां, प्रेम बिन आख्या प्रीत तो बिना, कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए, किन्निया जवानियां मुरझा गई ने रब जी तेरी प्रीत तो बगैर। किन्नी वार जवानी मिली है, जवानी कुमला गई है तेरी प्रीत तो बगैर। एक बेनती मैं संबंध विच होर करदा चला, जे आप चाहो कि जवानी जां जीवन इस वास्ते मिलिया है कि दो बच्चियां नू जन्म देना है, उन्हां नू पढ़ाउणा लिखाउणा है, उन्हां दे ब्याह कारज करने ने, बस इस वास्ते जवानी जां जीवन मिलिया है। प्यारियो मेरी बेनती नू बिल्कुल न्यूट्रल माइंड करके समझण दी कृपा करियो। एक काम इस जून विच ही नहीं है, असीं पिछलियां जूनां विच भी करदे आ रहे हां। जन्म बच्चियां नू दित्ता है ते पिछलियां जूनां विच भी दित्ता है, इस जून विच ही नहीं। पशुआं दे भी ते बच्चे हुंदे ने, परिंदियां दे भी ते बच्चे हुंदे ने, सप दे भी ते बच्चे ही हुंदे ने। जितनियां जूनां ने उन्हां सारियां जूनां दी वेल वध रही है, उन्हां सारियां जूनां दी पीढ़ी चल रही है, पर तुहाडी पीढ़ी चले। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सूत्र साडी झोली दे अंदर बख्शे, तेरी पीढ़ी चले पर किवें चले। गुरु के कीर्तनी अक्सर शब्द का गायन करया करते ने, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। तेरी वेल वधन दे नाल नाल तेरे मन दे अंदर धर्म का प्यार वधे, तेरी जीवन तेरी जवानी दे अंदर धर्म का चा धर्म का प्रेम बने। अगर वेल वध रही है और धर्म तो बगैर वध रही है, खिमा चाहवांगा वार वार ओ वेल पशुआं दे तोली वध रही है। बच्चे साढ़े ने, बच्चे पशुआं दे ने, अपनी हैसियत दे मुताबक असीं घर बना लैने आ, ज्ञान सूझ बूझ दे मुताबक, ते अपनी सूझ बूझ दे मुताबक बाकी दे परिंदे ते पशु अपना घर बना लैंदे ने, चूहे खुड्डा बना लैंदे ने, पंखी रुखां दे उत्ते आलणे बना लैंदे ने, कोई किस तरह का घर बना लैंदा है, कोई किस तरह का घर बना लैंदा है, जिवें दी उहनां दी हैसियत उवें दा उहनां दा घर, अपनी हैसियत दे मुताबक असीं घर बनाया। बच्चियां दे तल दे उत्ते असीं पशुआं दे बराबर चले गए,
घर बनाउन दे तलदे उत्ते असीं पशुआं दे बराबर चले गए। हुण मनुखा जून दी विशेषता विलखणता इह चाहीदी सी कि इह परमात्मा दे नाल अपने प्रीत दे नाते गंढ बना लवे, सांझ पा लवे। अगर इन्हें प्रीत परमात्मा दे नाल पाली है, इन्हें अपनी विशेषता नूं पहचानिया, विलखणता नूं पहचानिया, प्रीत परमात्मा दे नाल नहीं बने, इहदी जवानी ते इहदा जीवन पशुआं दे तुल ही गया, होर कुछ भी नहीं। कहना चाहवांगा पशुआं दे तुल जीवन चला जांदा है। कवि तुलसीदास जी तो इस तरह भी कहिंदे ने, भोजन भोग भय तीन चीजां दा जिक्र कीता, भोजन दी तलाश, भोजन भोग, भोग दे अंदर मस्त रहना, भय किसे नूं भय देना ते किसे तो भय लेना, किसे नूं डरा देना, किसे तो डर जाना। इह पशु पुरख समान, इह सब गल्लां पशु दे तुल ने। इह पशु पुरख समान, पशु भी रोजी दी तलाश करदा है, असीं भी करदे हां। पशु भी भोग करदा है, असीं भी करदे हां। पशु भी किसे नूं डराउंदा है, किसे तो डरदा है। साडी दुनिया दा दस्तूर भी इही। इह पशु पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पस जान। तेरे कोल रब्बी फलसफा रब्बी ज्ञान चाहीदा सी, अगर वह नहीं तो कवि जी कह रहे यह पशु पुरख समान। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, जितनिया जूना ने, जिन्निया जूना विचों असीं निकलदे निकलदे जूना नूं पिछे छड के इस मुकाम मनुखा मोड़ तक पहुंचे हाँ, उन्हां तमाम जूना की झोली विच एक वरदान परमात्मा ने नहीं पाया जो तुहाडी झोली विच वरदान पाया है। और वह वरदान की है? पशु अपने आप नूं तब्दील करना चाहे ते तब्दीली करन दा वरदान परमात्मा वल्लों नूं नहीं मिलिया। तुसीं अपने आप नूं तब्दील करना चाहो, तुहानूं अपना आपा तब्दील करन दा वरदान रब जी कोलों मिलिया है, तुसीं इह वरदान लै के आयो। पशु जिस सुभा दे अंदर जन्म लैंदा है, उही सुभा इहदा जीवन विच रहिंदा है, उही सुभा लैके दुनिया तो रुखसत हो जांदा है, चला जांदा है, मर जांदा है। यही कारण है कि जिन्ने अवतारी पैगंबरी रैबरी पुरश आए, उन्होंने उपदेश बख्शिया, किसे पैगंबरी पुरश का उपदेश किसे पशु जां परिंदे नूं मुखातब होके नहीं है। सब का उपदेश बंदे नूं संबोधन करता है, सब का उपदेश मनुख वास्ते है, सब का उपदेश साडे भले लई है। क्यों? क्योंकि वह तमाम पैगंबरी पुरश जानते ने असी अपने आप नूं तब्दील करना चाहिए कर सकने हैं, पशु अपने आप नूं तब्दील करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पशु पशु बन के जन्मदा है, पशु बन के जीवदा है, पशु दे सुभा अंदर चला जांदा है। इह कारण ने पशु दे नाम दे नाल कदी इह लफज नहीं जुड़े कि इह पशु बड़ा चोर है, इह पशु बड़ा बुरा है, इह पशु बड़ा पापी है, इह पशु बड़ा दुराचारी है, पशु कातल है, पशु मनमुख है। इह लकब इह नाम पशु दे नाम दे नाल नहीं जुड़दे, क्योंकि पशु नूं जो प्रकृति वल्लों परमात्मा वल्लों सुभा मिलिया है, वह अपने सुभा दे मुताबक ही जानवरां नूं मार रहा है, सुभा दे मुताबक खा रहा है। उन्हां वास्ते कोई पाप नहीं है, उन्हां वास्ते कोई पुण नहीं है। पाप पुण दे बंधन तो पशु मुक्त ने, पर मनुख इस बंधन दे अंदर है। मनुख दा नाम वार वार बदलदा है। भाई विधि चंद सूरमा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का जो अनिन सेवक ते शरदालू सिख बनिया, वो भाई विधि चंद बालपन दे अंदर छोटी उम्र दे अंदर आ जांदे ने अपने नानके पिंड सरेहाली, हरी के पतन दे नाल पिंड सरेहाली, सरेहाली आ जांदे ने। संगत बुरी मिल गई ते बुरी संगत मिलन करके भाई विधि चंद चोरियां करन दी बुरी आदत पा बैठे, चोरियां करदे रहे। भाई विधि चंद जवानी दे दौर विचों निकलदिया निकलदिया उस भाई विधि चंद नूं संगत मिल जांदी है गुरु अर्जन देव साहब जी दी, ते ओह विधि चंद बाद विच सूरमा भी बन गया, बाद विच गुरमुख भी बन गया। मनुख एक है, उन्हें अपना मन बदलिया ते चोर बन गया, उन्हें अपना मन बदलिया ते गुरमुख बन गया। मनुख ओही है, शरीर नहीं बदलिया। विधि चंद दियां लत्तां बाहवां नक्शो निगार रूप रंग कद काठ ज्यों दा त्यों रहा है, कुछ नहीं बदलिया।
अंदर बदलिया मन बदलिया मानसिक मंडल बदलन करके लोकां दे अंदर प्रचलित होया। विधि चंद चोर है मानसिक मंडल नूं अंदरों तब्दील करन करके लोकां दी जुबान ते ना आया। विधि चंद गुरमुख है, विधि चंद चंगा है, विधि चंद सूरमा है। अर्ज मैं कर रहा सा अपने आप नूं अंदरों बदलन दा वरदान परमात्मा ने साडी झोली विच पाया है। तुसी अपने आप नूं अंदरों बदलदे बदलदे नरोल शैतान दी तरह बन सकदे हो, शैतान दी तरह। खिमा चाहवांगा लफज बोलने मजबूरी ने। और तुसी अपने आप नूं अंदरों बदलदे बदलदे नरोल भगवान दी तरह बन सकदे हो, निरंकार दी तरह। तुसी अपने आप नूं बदलदे बदलदे साधु बन सकदे हो, तुसी बदलदे बदलदे चोर बन सकदे हो, तुसी परोपकारी बन सकदे हो, दुराचारी बन सकदे हो, सब तुहाडे वस विच है। तुसी अपने आप नूं की बनाउणा है, एवें समझ लो जीवन एक पत्थर दी तरह है और तुसी हो जीवन नूं घड़न वाले बुत तराश। जिहड़ा पत्थर नूं शिंगारदा है, पत्थर नूं घड़दा है, ओनूं संघ तराश कह दिंदे ने, या बुत तराश। संघ पत्थर दा ही नां है दूसरा। तुसी जीवन नूं तराशना है ते जीवन नूं तराशदियां तराशदियां तुहाडी मर्जी है, जिस तरह की मर्जी अपने विचों मूर्ति नूं जन्म दे लो। पत्थर कदी इनकारी नहीं हुंदा कि मैं ए मूर्ति बनना है, मैं ए मूर्ति नहीं बनना। मनुख दा मन वार वार इनकारी हुंदा है, पर मनुख दे मन नूं घड़न वास्ते आम हथौड़ा ते छैनी जिहड़ी पत्थर नूं घड़न वास्ते चाहीदी, उस हथौड़े छैनी की लोड़ नहीं है, उन्हां हथियारां की लोड़ नहीं है। इनू घड़न वास्ते इकले गुरु शब्द की लोड़ है। गुरबाणी तो बाहर दा वचन है, मैं तुहाडे सामने अर्ज कर रहा, मन लोचे बुरियाइया गुर शब्दी ए मन होड़ी है। है गुरबाणी दे नाल मिलदा जुलदा पर बाणी दे अंदर है नहीं है। मन लोचे बुरियाइया गुर शब्दी ए मन होड़ी है। मन दौड़दा है बुराइया वल, रोकना किवें? गुरु शब्द दे नाल। इनू घड़ना किवें? गुरु शब्द दे नाल। सवारना किवें? गुरु शब्द दे नाल। फिर एक बेनती मैं तुहाडे सामने होर भी करदा चला, परिवार दे अंदर जो परिवार दा मुखिया हुंदा है, परिवार दे अंदर दो चार पांच दस मैंबर जिन्ने भी, परिवार दे अंदर एक परिवार दी वागडोर संभालन वाला परिवार दा मुखिया हुंदा है। उस परिवार दे आगू परिवार दे मुखिए दी जिम्मेवारी परिवार दे बाकी मैंबरां नालों वधीक हुंदी है। ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਗੂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਪਤਨ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨ ਪੁਣੇ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਲਾਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਖੈਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਨ ਏ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਅਵਰ ਜੋਨ, ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਅਵਰ ਜੋਨ, ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਅਨੰਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੋਨ, ਮੁਖੀਆ ਜੋਨ, ਆਗੂ ਜੋਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋਨ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡਣ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਛਾਣੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋਬਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਜੋਬਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਜੋਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਯਾਫਤਾ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਪਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਜੋਬਨ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੋਲ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋਬਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਬਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ?
आखिया शहे दी प्रीत परमात्मा दी प्रीत चाहीदी है, रब दा प्रेम चाहीदा है। अगर जोबन दे के खुदाई प्रेम मिल गया तो समझ लो सौदा बड़ा सस्ता मिल गया, बड़ा सस्ता मिल गया। पता नहीं किन्नी वारे जोबन मिलिया ते किन्नी वारे सुक गया है, बुराइयां दे अंदर कुमला गया है, बुराइयां दे अंदर ते जेड़ा बूटा सुक जांदा है कुमला जांदा है उन्हों ना पत्ते ही लगदे ने, ना फुल ही लगदे ने ते ना फल ही लगदे ने। अगर तुहाडे जोबन नू सत संतोख दा फल नहीं लगा, भौ भावनी दे फुल नहीं लगे, श्रद्धा प्यार दीआं टहिणियां शाखावां ने इस जोबन दे उत्ते जन्म नहीं लिया तो फिर जोबन सुक्का समझो, जोबन नू हरिया मत समझो। जोबन दे अंदर की है, निरा सुक्का निरा कमलाउना, पर इह सुक्का कमलाउना नजर कित्थों आ रहा है? क्योंकि जेड़ियां टहिणियां सुक जांदियां ने मुरझा जांदियां ने उन्हां दा रूप रंग चला जांदा है, उन्हां दी बहार चली जांदी है, सुंदरता चली जांदी है। मनुखी मन दी सुंदरता अलोप है, कुमलाया मुरझाया होकिया झोरिया दे अंदर नजर पै रहा है। कोई फुल नहीं, कोई फल नहीं, कोई भावना नहीं ते कोई शांति सुकून जोबन दे अंदर नहीं, निरा अग्ञान निरिया टकरां। जोबन दे अंदर जोश बड़ा है पर जोबन दे अंदर होश दी अख तो बगैर चल रहे हैं। ते जे जोबन होश दी अख तो बगैर चले ते जोबन हर दे पानी तरह होंदा है, ये रोड़ के लै जांदा है, नुकसान बड़ा करदा है। जोबन दे अंदर जोश होना जरूरी है पर नाल होश दी अख मिलना होर जरूरी है, बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर होश तो बगैर जोबन नू खुला छड़िया जाए ते ए जोबन नुकसान बड़ा करदा है। अगर इस जोबन नू होश दे किनारे मिल जन, होश इनू एक सीमा दे अंदर बन के चलाए ते फिर एक दरिया दे पानी नदी दे पानी नू किनारिया दे विचकार विचकार रोकदे रोकदे भावे सैकड़े मील दूर लै जाओ पानी नू, वो पानी नुकसानदायक नहीं है जो चल रहा है, पर दो किनारिया दे विचकार चल रहा है। ओ पानी नुकसानदायक है जो किनारियां नू तोड़ के चल रहा है, फसलां नू तबाह करेगा, पिंडां आबादियां शहरां नू तबाह करेगा और मनुख नू तबाह करेगा। जो हड़ दा रूप बन के आया है, जवानी जोबन हड़ दा रूप बन जांदी है जद इनू किनारे ना मिलन, इनू सीमा ना मिले, इनू होश दे नेत्र ना मिलन। अगर ये होश दे सीमा दे अंदर बजी हुई चले तो इस जोबन कोलों समर दा बड़ा कुछ है। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा, जोबन चला जाए मैनू कोई डर नहीं है, पर इसके इवज मिलना की चाहिए है? परमात्मा का प्रेम मिलना चाहिए है। फिर मैं चलो मुखसर बेनती होर करदा ही चला, जिस प्रेम नू असी प्रेम जान लिया है हकीकत के अंदर वह प्रेम नहीं है। यह प्रेम तो पशुआ कोल भी होंदा है, शरीर शरीर की कशिश विच रहिंदा है, शरीर शरीर की पकड़ विच रहिंदा है, बड़ा नीवी पत्तर का प्यार है, बड़ा हौली क्वालिटी का प्रेम है, शरीर नू शरीर दे नाल प्रेम है। और एक शरीर दूसरे शरीर को रज जांदा है, शरीर को भर जांदा है ते वह शरीर फिर दूजे शरीर लभण वास्ते चल पैंदा है। शरीरां नू बदलना शरीर दे नाल प्यार करना यह पशु दे तुल प्रेम है, यह प्यार ते पशु कोल भी है। तुहाडा प्रेम थोड़ा उचेरा होना चाहिदा सी। दूसरा प्रेम है मानसिक तल दे उत्ते, मैनू इहदी जात पात धर्म मजहब कौम रूप रंग दे नाल कोई लैण देण नहीं है, इहदे मन दे विचार ते मेरे मन दे विचार मेल खा गए ने। मन दे विचार मेल खा जाण मित्रता बनदी है, विचारां दे अंदर तकरार बन जाए तो फिर दराड़ बन जांदी है मित्रता दे अंदर। मित्रता किवें बनदी है? केवल मित्रता विचारां दे सहारे, विचार मिल गए ने तो मित्र है, विचार टकराने शुरू हो गए ने तो मित्रता खत्म है, दराड़ पै जांदी। कल तक दे मित्र अगले दिन दुश्मन बने हुए मिलते ने, क्यों? एक दे विचार उच्चे हो गए ने, एक दे विचार नीवे हो गए ने, विचारां दे अंदर तकरार हो गया, विचारां दे अंदर टकराहट पैदा हो गई। नंबर एक दा प्रेम बड़ा नखित पद्धर दा हौली पद्धर दा प्रेम, केवल शरीर दा रूप रंग नक्शो निगार वेख के किसी दे नाल प्रेम करना पशु दे तुल प्रेम है। दूसरा प्रेम शरीर तो अगे चला गया है,
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋਬਨ ਖਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੀਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇਗਾ, ਦਿਨ ਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਾਹੇ ਫਰੀਦਾ, ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਏਤੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਤਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਬਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋਬਨ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ,
भगत फरीद साहब जी दी रसना द्वारा उचारे हुए श्लोक दो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। इन्हां दोहां श्लोकां दे अंदर ही बिरहा दा जिक्र है। सब तो पहला बंदे दे मन दे अंदर मोह बनदा है, मोह और मोह दी परिभाषा इस तरह कह लईए कि जो घर दी चार दवारी दे अंदर अंदर रहे उहदा नाम मोह है। घर दी चार दवारी दे अंदर अपना परिवार चंगा लगदा है, दूजियां दे परिवार चंगे नहीं लगदे। अपने बच्चे चंगे लगदे ने, दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगदे। तो मोह खतरनाक तां है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगदा है ते दूजे अपने नहीं लगदे। तो जद दूजे अपने लगदे नहीं तो फिर किसी दूजे नूं उजाड़न लग्यां डर भी किस चीज दा है। जद कोई दूसरा अपना लगदा ही नहीं तो अपना नहीं ते फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी काहदी है। मोह दे अंदर बंदा दूसरे नूं उजाड़ सकदा है अपने आप नूं वसाउण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नूं बंद कर सकदा है अपना कारोबार चलदा रखण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मुंह विचों भोजन खो सकदा है अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते। मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकदा है अपनियां खुशियां लई। दूसरे नूं रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओह बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसी नूं दुख देण तों पहला उस जगह दे उत्ते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है। अगर इस जगह दे उत्ते मैं खड़ा हुंदा, इह बंदा मैनू दुखी करन दा यतन करदा तां मेरे मन दे उत्ते की बीतदी, तां मेरे मन दी दशा की हुंदी। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा इन्हां गल्लां दी विचार करनी शुरू कर देंदा है। तो जद ये गल्लां विचार दे अधीन आ जान तो फिर पाप हुंदा ही नहीं है, अपराध हुंदा ही नहीं है। पाप अपराध कदों हुंदा है, मन ने बुराई नूं चितवया है ते तन उसे वक्त ओह काम करन वास्ते उठ के तुर पिया है। मन ने कह दिता है विचारी करनी चाहीदी है, तन उसे वक्त नालों नाल इस राह दे उत्ते चल पिया है, अपराध होया ते पाप होया। मन ने कह दिता है चोरी होनी चाहीदी है, तन नालों नाल उठ के किसी की जेब कतरन लई किसी का घर उजाड़न लई चोरी करन लई चल पिया, अपराध होया पाप होया। अगर मन कहे चोरी करनी चाहीदी ते तुसी इस विचार नूं विचार अधीन कर लो, परखना शुरू कर दो, रिड़कना शुरू कर दो भी ये कम चंगा है जां बुरा है, तो आप चंद समय बाद पाओगे तुहाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है। मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम, फिर विचारी जाओ, इस विचार नूं रिड़की जाओ, कुछ समा बीत जान तो बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है, चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदिया सार मैला कर्म करन वाले
बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने। मैला विचार बन जाए उनू समा देना, उस विचार नू डिले करना, इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे उह मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने, जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसी वक्त मैं फिर अर्ज करांगा, अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने, ते जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने, तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे। दूसरे दे बच्चे दे मूंह विचों भोजन दा टुकड़ा खोह के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे, क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह की अवस्था दे अंदर पहुंचया होया मनुख दूसरे की गरीबी, दूसरे की दीन दशा, दूसरे की भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है, ना मिटा सके ते उहदे हिरदे की डूंघाई विचों एक अरदास हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक है मेरी लोड़ है भोजन, पर दूसरे की लोड़ भी तो भोजन है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। मेरी लोड़ है कपड़ा, दूसरे की लोड़ भी तो कपड़ा है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। जो मेरिया लोड़ा ने उस समाजिक प्राणी होने के नाते सब दियां लोड़ा ने। मैं किसी दियां लोड़ा खो लवा, दाता खो लवा और अपनियां लोड़ा पूरियां करा, यह मैनू शोभा नहीं देंदा। फिर वो दूसरे नूं भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जांदी है ते फिर वो अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर, ते सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जांदा है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विच वो आप भी आ जांदा है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मातर सब कुछ आ जाते हैं, दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जाते हैं सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर भावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्हें ही है ना जिनी समर्था है, कर भावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवच करदा है, ते जो दूसरे का बुरा मंगदा है एक दस्तूर है परमात्मा का बनाया होया उदा अपना बुरा हुंदा है अवच हुंदा है। दूसरे का बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन दा तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे ए यतन कर रहे हो। दूसरे का भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ये नुकता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मांग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जा नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है साडे हाथ विच ते है नहीं। असी किसे दे कोलों खोई तुरे जावांगे लई जावांगे, अगर परमात्मा ही उहदी जेब भरी जा रहा है ते असी लै लै के थक जावांगे, देण वाला कदी थकदा नहीं है। तो अर्ज मैं कर रहा सा दूसरे दा बुरा करना जां बुरा मंगना इस तरह समझ लो कि तुसी अपना बुरा आप ही कर रहे हो, अपने हत्थां दे नाल ही अपने पैरां दे उत्ते कुहाड़ा मार रहे हो। दूसरे दा भला मंग के तुसी अपना ही भला मंग रहे हो, एक सूत्र है परमात्मा दा दस्तूर है। अगर ये नुकता समझ विच आ जाए तो धर्म दे राह दे अंदर इस नुकते दे जरिए तुहानूं बहुत वड्डी सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं रीढ़ दी हड्डी दा इक मणका है सब दा भला मंगणा, भला वेखणा, भला सोचणा। असीं भला मंगदे भी नहीं आ, भला करदे भी नहीं आ, भला सोचदे भी नहीं आ, तो फिर हुंदा की इह जीवन दे अंदर बुरा हुंदा है। जीवन दे अंदर कले कलेश दुख दलिद्र बन जांदे ने, तो फिर साडे कोल उहनूं मिटाउण वास्ते राह की है। फिर भी ये नहीं कि जिस कारण करके बीमारी बनी है हुण मैं उह कम ना करा, कम उही करना है। हुण अगला नुकता है बस $5 देने ने अरदास करवा लेनी है ताकि मेरा भला होवे, इस तरह भला हुंदा नहीं है।
दूसरे कोलों पाठ करवा लेना है ताकि मेरा भला होए ते खुद करना नहीं, खुद करना नहीं, परहेजगार बनना नहीं, शुभ कर्म करना नहीं, तो फिर जीवन दे अंदर कले कलेश होके चोरे ये सब कुछ वधदा तुरिया जांदा है। खैर मैं अपने विषय वल मुड़ा। नंबर एक दे उते है मोह, फिर इस तो बाद अगे चल के आंदा है प्रेम। ये प्रेम का दूसरा रूप है कि सब का फला मंगना। जिस हिरदे दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी डूंगी ते बड़ी तिखी चलती है, वो भला मंगदा जरूर है पर केवल अपना ते अपने परिवार का भला मंगदा है, अपने वास्ते मंगदा है, दूसरे वास्ते नहीं। दूसरे का लख नुकसान हुंदा है, हुंदा रहे, मेरा ना होए। और मेरे को इस तरह का एक प्रेमी मैनू मिलिया भी सी। एक मार्केट के अंदर किधरे अग लग गई दिवाली के दिनों के अंदर, दुकाना 10-12 सड़ के राख हुई, तबाह हो गई, ओदी दुकान बच गई। सबब दे नाल गुरुद्वारे आंदा है प्रसाद लेके, अरदास करवा रहे, निरंकार तेरा मैं शुक्र गुजार हां मेरी दुकान बच गई है। मैं क्या सड़िया किनिया ने, कहन लगा 10-12 दुकाना सड़ के बिलकुल सवाह बन गई ने, राख बन गई ने, मेरी बच गई है, मेरी बच गई है, मैं खुश हां। दूसरे दियां सड़ गई ने, मैनू कोई अफसोस नहीं है। इस तरह का मनुख मोह दे अंदर जकड़िया है। इस तरह के मनुख की अरदास का की लाभ होएगा, की अर्थ होएगा। जो दूसरे की दुकान सड़ गए उदे उते अफसोस जार भी नहीं कर रहा कि सड़ गई ने, अपनी बची अपने बचन वास्ते हासे निकलते ने। इस तरह का मनुख अंदरों बड़ा करप्ट हुंदा है, खोटा हुंदा है, अंदर का शुद्ध नहीं हुंदा। दूसरे का नुकसान होया है उदे विच खुशी नूं प्रगट करना ये बड़े हौले मनुखा का काम है। दूसरे के रोने के अंदर किसी नूं रोण की जाच आ जाए, दूसरे की खुशी के अंदर खुश होने की जाच आ जाए, दूसरे के हंजू वेख के अक्षबार होने की इस नूं वादी पै जाए, इस तरह का मनुख फिर रब के नेड़े नेड़े अंदरों हुंदा तुरिया जांदा है। तो खैर प्रेम के अंदर बंदे नूं दूसरे का दुख भी दुखी करके रख देता है। दुख दूसरे दे घर विच आया है, बंदा अपनी जगह दे उत्ते परेशान होया है, दुख आया क्यों है, ते फिर उन्हूं पता भी नहीं होंदा, ते उदी अरदास भी हो जांदी है निरंकारे दा भला कर। बड़े सज्जन इस तरह दे मिलदे ने, निरंकारे दा भला कर, जिदे वास्ते अरदास कीती जा रही उन्हूं पता भी नहीं कि मेरे संबंध विच कोई पाठ पूजा कर रहा है या अरदास कर रहा है, पता भी नहीं। प्रेमी हिरदा भले की सोच रखता है, भला मंगता है, किसी का दुख उहदे कोलों बर्दाश्त हुंदा नहीं है, किसी का दर्द उहदे कोलों सहन हुंदा नहीं है। दूसरा रोंदा है नाल उहदे भी हंजू उतरने शुरू हो जांदे ने, दूसरा हसदा है ते उह परमात्मा का शुक्र गुजार हुंदा है, निरंकार तो इहनूं दातां दित्तियां ने, जिन्हां नूं नहीं मिलियां तो उहनां दी झोली भी बख्श, सारिआं नूं दे। प्रेमी हिरदा सब का भला मंगता है। प्रेम जिवें जिवें मन दे अंदर टिकदा जांदा है, प्रेम अंदर पकदा जांदा है, प्रेम ही अगे जाके पकदा पकदा वैराग दा रूप धारण कर लैंदा है। अज जिहड़े दो श्लोक भगत फरीद साहब जी दे मैं तुहाडे सामने पढ़ के सुनाए, दोवां दे अंदर वैराग दा जिक्र है। सब तो पहला मोह, फिर उस तो बाद प्रेम। प्रेम अंदर पक जाए, प्रेम अंदर टिक जाए, प्रेम पकदा पकदा अगे जाके वैराग दा रूप धारण कर लेंदा है। ठीक इस तरह ही जिवें आप किसे गऊ जां मज दा किसे भांडे दे अंदर दुध लेके आउंदे हो, दुध उस दुध नूं जाग ला के खट्टा ला के जमा दे हो, उहदा रंग ढंग ते उस तरह दा ही रहिंदा है पर उहदा नां बदल जांदा है ते थोड़ा जिहा उहदे अंदर फर्क पै जांदा है। उह जमन तों बाद बन जाएगा दही। रंग दा भावें चिट्टा ही रहा है पर उहदा नाम बदल गया। हुण पुछो भी भांडे दे अंदर की वस्ते, कोई यह नहीं कहेगा दुध पिया, वेखण वाले सारे कहणगे दही, बर्तन दे अंदर दही है, कल दुध सी अज दुध नहीं है, अज दही है। फिर सिजे सिजे उहनूं मथना शुरू कर दिता है, उहनूं मथदिआं मथदिआं अगों दो चीजां निकलियां ने, एक दे अंदर कढ के मक्खण पा दिता है ते दूजे भांडे दे अंदर कढ के लस्सी पा दित्ती।
है दुध तो पैदा होया सब कुछ, पुछो भी इस भांडे विच की ते दूजे विच की। जवाब आएगा एक दे अंदर मक्खन है, दूसरे दे अंदर छाछ है, दूसरे दे अंदर लस्सी है। उस मक्खन नू तपा दियो ते फिर

लबरेज है। तो खैर वैराग, वैराग दी अवस्था दियां निशानियां ने कि इस तरह दे मनुखी मन विचों हर वक्त हंजू उठते रहिंदे ने। प्रेम अंदर नको नक भरिया रहिंदा है, प्रेम समाया रहिंदा है, ते ओ प्रेम फिर वैराग दा रूप बन के हंजुआं दे राही ई गर्म जलदे राही अखां विचों बाहर टपकना शुरू हो जांदा है। इस तरह दे मनुख दे कोल किधरे मामूली जी गुरु दी गल करो ओदे नेत्र तुहानूं वगदे दिसणगे। इस तरह दे मनुख दे कोल किधरे जाके कोई गुरु की कथा कहानी आरंभ ही करो छेड़ोई उसे वक्तों दे गले दे अंदर गच आ जांदा है, गला रुक जांदा है और हंजू वगने शुरू हो जांदे ने। कमाल दी गल है, इन्ना वैरागी हिरदा कल तक लगातार गुरु दियां कथा कहानियां सुनदा सी पर कदी रंचक मात्र मन दे उते असर नहीं सी होया। अज थोड़ी जी सुनदा है उहदे नाल ही मन नूं चोट लगदी है, मन रोना शुरू कर दिंदा है। कहिंदे ने कि रुख दी टहनी जिन्नी कोमल हुंदी है, थोड़ी जी हवा आवे ते हवा दे झोंके दे नाल रुख दियां टहनियां झूमना शुरू कर दिंदियां ने। मामूली हवा दे नाल, ना मात्र हवा दे नाल पत्ते हिलने शुरू कर देंदे ने। रुख दा तना पकदा पकदा काफी मोटा हो जाए और वो तना ताकतवर बन जाए, थोड़ी हवा दे नाल ते उस तने नूं हिलाया नहीं जा सकदा, हिलेगा नहीं, वो तना झूमदा नहीं है। कोमल टहनियां हवा दे सामने झूमदियां ने पर ताकतवर तना एक रुख दा टाणा उते हवा दे सामने नहीं झूमदा। बहुत तेज तूफान तो बाद वो भी झूमदा है पर फिर अगे चलो जे पत्थर है ते पत्थर भावे तूफान चलते रहन फिर वो बिल्कुल ही नहीं झूमदा। पत्थर हवा दे सामने नाच नहीं करता, झूमदा नहीं है। जिस मनुख दे मन दे अंदर वैराग बहुत ज्यादा है, गुरु दे संबंध विच प्रेम बहुत ज्यादा है, मामूली जी आवाज गुरु दे संबंध विच कोई कन्ना तक आई है वो झूमना शुरू कर देंदा है, रोना शुरू कर देंदा है, वैराग अंदरों बाहर फुटना शुरू हो जांदा है। मामूली जी गुरु दी गल सुन दे आई। इस तों अगे तुरे जाओ कुछ मनुख इस तरह दे ने, उन्हां दे मन दे अंदर गुरु दे संबंध विच प्रेम ते हुंदा है पर वह प्रेम पक्या नहीं हुंदा। कदी कदार 6 महीने साल बाद उन्हां दे मन दी दशा बनदी है, कथा चलदी है, कथा नूं सुनदिया कीर्तन नूं सुनदिया किधरे मामूली जिहा मन वैरागमय बनदा है, नहीं ते नहीं बनदा पर प्रेम हुंदा है, पर थोड़ा हुंदा है, कच्ची म्यार वाला हुंदा है, अजे पक्या नहीं है। कुछ इस तरह दे पत्थर लोग भी हुंदे ने, खिमा चाहवांगा भावे दिन पर रात 24 घंटे लगातार कथा चलदी रहे कीर्तन चलदा रहे पर उन्हां दे नेत्र कदी तर हुंदे ही नहीं है, कदी नेत्रां विचों वैराग आउंदा ही नहीं है, बड़े पत्थर बड़े कठोर। तो खैर अज दे इह महाभाग भगत फरीद साहब जी दे, कहिंदे ने फरीदा चिंत खटोला हे परमात्मा मैं चिंता नूं खटोला बना लिया। खटोला कहिंदे ने मंजी नूं, मैं चिंता नूं, ते चिंता किस चीज दी है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਇਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ।

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारिया जिनी तू सेविया पाओ कर

दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। परम सम्मान योग युगो युग अटल चवर शतर दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, हजूर की कृपा नाल आप जी हफ्तावारी दीवान की हाजरी भर रहे हो। बड़े प्यार दे नाल आप जी ने गुरमुखा पासों गुरु तेग बहादुर जी की इलाही गुरबाणी शरण की है। कुदरती तौर पर जिस स्थान ते मनुख ने कुछ समाज सेवा की होवे ते जिस स्थान तो दाते ने कृपा करके झोली विच दातां पाईयां होन ते असल विच गुरसिख दा मन परत परत के उसे स्थान दा ते उसे गुरु दा शुक्र करदा है। एही तां इक गुरु के सिख दा सब तो वड्डा गुरु कृपा नाल बख्शिया होया एक गुण है। आम तौर ते लोग जदों मकान दी छत ते चढ़ना हुंदा है ते एक एक पौड़ी ते पैर रखदे ने, एक एक पौड़ी दे डंडे नूं हाथ विच पकड़दे ने ते मनुख दा एक सुभा है जिन्नी देर तक छत नहीं मिली उन्नी देर तक पौड़ी दे डंडे पौड़ी दा आसरा तकदा है ते जदों उन्हूं पौड़ी दे आसरे नाल छत दी प्राप्ति हुंदी है ते जिदे राही छत मिली उहदे वल कुदरती तौर ते पिठ हो जांदी। चढ़दा पौड़ी दे राही है पर उसे पौड़ी वल पिठे गुरु कृपा करे। कैसे प्यारे बचन गुरमुखा कह जिस पौड़ी दे नाल गुरु ने यह कृपा कीतियां उहदे वल ध्यान रखे। हजूर मेहर करो हर एक प्राणी मात्र दी ए बिरती बन जाए तेरा शुक्र करन दी। आओ साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इलाही बाणी विचों आपां ने विचार करनी है। कृपा करिया जे आप जी ने एकाग्रता बख्शनी ते एक अरदास दास लई भी करनी। सतगुरु अपनी विचार अंदर दी एकाग्रता नाल अंदर दे टिकाओ नाल ते प्रेम भावना नाल भिज के अपने बचना दी विचार करन दी सूझ बख्श। आप साध संगत जी आसीस बख्शो करो कृपालता कोई भी रचना हजूर दे नाम तो वांझी ना रहे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा जदों आपां पाठ करने हैं ते एक शब्द परत परत के बाणी विच मिलदा है गुर सिख। एक शब्द है सिख दूसरा है गुर सिख ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं मनन वालियां दी जमात नूं भी सिख ते गुर सिख दे नां नाल संबोधन किया जांदा है ते मन विच आया सतगुरु आप गुरगद्दी ते विराजमान। देखो सिख शब्द का अर्थ है सीखना ते सतगुरु ने ऐसे कमाल का शब्द दिता है सिख शब्द दे के बंदे दे अंदर दी खौमे नूं मसल दिता कि कदी मन विच ए आई ना कि मैं सब कुछ सीख गया। सिख शब्द का मतलब है सारी जिंदगी सीख के भी तेरे अंदर यही भावना बड़ी रहे मैं अजे होर भी कुछ सीखना ते सीखना की
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ

निष्ठापूर्वक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी शैपं गुरु प्रसाद

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ मेर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

एक उत्तम पंत सुनेहौ गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। परम सम्मान योग शब्द गुरु परमेश्वर जी दा खिरदा स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हफ्तावारी जो विशेष दीवान सजदे ने अमृत वेले तो हजूर दी कृपा लै रहे हो, जो इस गुरु घर दी निता प्रति दी ए मर्यादा बन चुकी है, अमृत वेले सिमरन गुरुदेव जी दे बख्शे हुए नितनेम उस तो उपरांत इलाही गुरबाणी दा कीर्तन संपूर्ण आशा दीवार आप जी ने अज सरवण कीती, उस तो उपरांत इलाही बाणी दा कीर्तन होया। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर कर देन और आप साध संगत आशीष बख्शो, जो पिछले दो हफ्तियां तो आपां ने भाई साहिब भाई गुरदास होरां दी वार नूं आधार बनाया सी कि गुरु के सिख दे लक्षण की ने, गुरसिक्खी दी निशानी की है, ते पिछे आपां विचार चुके हैं भाई साहिब दे कुछ बचन कि धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलै निवाण नूं, निर्मल शीतल शुद्ध प्राणी, बहुरंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी, तत्ता हो वै धुप विच छावै ठंडा विरती हानी, तपदा पर उपकार नू ठंडे पर उपकार विहानी, अगन विहाए अगन बुझाए तपत विच ठंडा हो वै बिलम न आनी, गुरसिखी दी एहो निशानी। भाई साहब दे बचन आपां इतों तक वाचे सन, सिख विच निम्रता पानी दी तरह, सिख निवान नू जांदा जिवें पानी नीवे पासे नू तुरदा। ते असी तीसरा लक्षण विचारिया सी कि गुरु का सिख जेड़ा वो अपने अंदरों ते बाहरों निर्मल है, जिवें पानी निर्मल है इसे तरह सिख भी जेड़ा वो निर्मल है। अगे जेड़े आपां अज कुछ पॉइंट वाचने ने जां विषय पानी शीतल है ते गुरु का सिख भी शीतल है। पानी जेड़ा वो हर एक नू शुद्ध कर देंदा है, वो सब दी मैल धो देंदा है। ते गुरु के सिख विच भी मेरे गुरु नानक ने इन्नी कु कृपा कर दिती, ए भी मैले मना नू जे किते गुरु का सिख होवे पूरन ओदे कोल बह जान ते मैलियां नू निर्मल कर देंदा है। जिवें पानी हर एक नू अपने वल्लों सुख दिंदा है, हर एक रंग विच रज जांदा है, बनस्पति दे हर रुख दे अंदर पानी है, ते गुरु का सिख भी हर एक दे नाल मिलाप रखदा है। जिवें हर एक बनस्पति दे पत्ते विच पत्ते विच पानी दी कृपा है, ते सिख हर थां ते निरंकार दी जोत नू देखदा है। पानी धुप विच तपदा है पर तपदा होया भी परउपकार करदा है, ते जदो गुरु के सिख अंदर भी किते शीतलता दे नाल गरमैश आउंदी ए भी तपदा है, ते ए तपदा होया भी भला करदा है। ते साहिब कहिंदे ने जे तपदा होवे ते तपदिया होया भी ए अग नू बुझा देंदा है। आओ अज इस पौड़ी नू आपां संपूर्ण कर देणा, भावां के इस संबंधी
जितना समा मर्जी आपा विचार करते रहिए पूरी सिखी की परिभाषा ही इस पौड़ी विच है, पर आने वाले दिनों विच कलगी वाले पिता जी दे पुरब आ रहे ने, सतगुरु दे साहबजादियां दे साके आ रहे ने, आपां ओ दिन भी जरूर वाचने ने। कृपा करो मेरे ते, आप समूह माई पाई आसीस बख्शो, एकाग्रता बख्शनी, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उस दिन अर्ज कीती सी कि भाई गुरदास कह रहे ने पानी निर्मल है, ते गुरु के सिख दा किरदा भी बाणी पढ़ पढ़ के निर्मल हो जांदा है। ते अज भाई गुरदास कहिंदे पानी शीतल है, जदों कोई मनुख प्यास नाल तपदा होवे जां किसे दे तन नूं गर्मी ने अत दा तपाया होवे, ते उह तपदे होए तन नूं लै के पानी विच इशनान करे ते उहदी चमड़ी नूं ठंड पहुंचांदा है पानी, ते जे किते अंदर तपदा होवे प्यास दे नाल, अंदर तड़प होवे प्यास नाल व्याकुल होवे, ते उह जदों पानी नूं पींदा है ते पानी उहदे अंदर नूं भी ठंड पांदा है, ते उहदे तन दी चमड़ी नूं भी ठंड पहुंचा दिंदा है। ते भाई गुरदास ने जिहड़े बचन कहे कि पानी शीतल है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पुछ ली हजूर सिख अंदर किन्नी कु शीतलता है, लोक किदे विच तपदे पए ने, ते गुरु नानक साहिब जी ने ना गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग विच जिहड़ा पहला शब्द उचारण कीता है, ते उस शब्द दी जिहड़ी रहाओ दी तोके उहदे विच मेरे बाबा जी ने तपन दी गल कीती, केड़े लोक तपदे ने ते तपश की हो जाइए ते तपन दा कारण की। हजूर ने बचन कीता कहन लगे हर बिन जियो जल बल जाओ, अंदर तपदा है अंदर विलकदा है, पर उदो जदो परमेश्वर दा नाम भुल जाए। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर ना ही थाऊ, साहब किन्ने अपने गुरु नू पूछ के आया वा, ते इको उत्तर मिलिया सजना अंदर दी तपश नाम तो बिना नहीं मिटदी। ध्यान देना, सिर्फ मैं अर्ज अजे ए कर रहा कि अंदर दी तपश नू सिख मिटा सकदा है, ते तपश केड़ी है। हजूर दा दूसरा प्रमाण बाणी विच आउंदा है, जदों असीं पढ़ने आ जै तन बाणी विसर जाए ज्यो पक्का रोगी बिलड़ाए। हजूर दी बाणी दा तीजा प्रमाण साहिब कहिंदे ने बसंत स्वर्ग लोक है, जित तै पृथ्वी नव खंडना है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। किवें अंदर तपदा है? हजूर कहिंदे ने कौतक कोड तमाशिया चेतना आवश नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। साहिब दी बाणी पढ़ने आ, साहिब कहिंदे ने जित कर हर कंत ना प्रगटी, पठ नगर से ग्राम केड़े हिरदे तपदे ने। साहिब कहिंदे ने आषाढ़ तपंदा तिस लगा है, हर नाहा ना जिन्ना पास। एदा मतलब जेड़ा हिरदा तपदा पै बाणी तो बिना, जेड़ा हिरदा तपदा पै नाम तो बिना, जेड़ा अंदर विलकदा पै बंदगी तो बिना। ते भाई गुरदास तुसी कह रहे हो पानी शीतल, ते की गुरु का सिख एना कु ठंडा है कि एहो जे तपदे हिरदिया नू शांति दे सके, एहो जे तपदे हुए हिरदिया नू ठंड दे देवे, ओदे अंदर किन्नी कु ठंड है कि तपदे लोकां दा ओदे ते असर नहीं। हुण गुरु का सिख होवे बैठा ते ओदे चार चुफेरे अग नाल भरे हुए लोक बैठे होण, कोई निंदक होवे, कोई इरखालू होवे, कोई साकत होवे, कि भाई गुरदास गुरु का सिख इन्ना कु शीतल है एदे उपर तपदे कोई लोकां दा असर नहीं। ते भाई साहब ने क्या कहन लगे, सजना जे तू एदा उत्तर लेना है ते गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नू ध्यान नाल पढ़ी। मैं सिख शब्द वर्तना पियावां ते गुरु ग्रंथ साहब ने उस सिख नू संत कह के संबोधन कीता है। कहन लगे कि उस संत हिरदे ते तपश दा कोई असर नहीं, ते भाई साहब ने अपने वल्लों दलील दित्ती। कहन लगे भगत कबीर साहब दा एक श्लोक पढ़। कहन लगे चंदन दा बूटा है, मैं अर्ज कर रहा सिख इन्ना कु शीतल है, वो तपदिया होया दे विच रह के भी अंदर दी शीतलता नू कदी खोंदा नहीं, ओदे अंदर दी ठंडक नू कोई खो नहीं सकदा। सतगुरु ने बाणी विच कहा, साहब कहिंदे ने चंदन दा रुख है जिदे चार चुफेरे आपा तकने महके
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਕ ਤੇ ਠੰਡਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪੋ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਤੇ ਮਹਿਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੀਤਲ ਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਕੌਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਡਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੀਤਲ ਹੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਤਲ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਕ ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਰਖਾਲੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਪਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਪੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵੀ ਠੰਡਕ ਵਾਲੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਵਣ ਚੰਦਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਏ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸੀਤਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਈ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੈ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਸ਼ੀਤ ਰੁਤੇਣ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੈ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਉਹ ਠੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ
शीतल हो गए मनवा, अंदर दी तपश मिट गई ते ओदा अंदर शीतल हो गया, ठंडा हो गया। ते गुरु की बाणी दी शीतलता लैके फिर जेड़ा ओदे नेड़े टुकया सिख ने ओदे अंदर नूं भी शीतल कर दिता। साहब ने बाणी विच एक पवित्र श्लोक उचारण किया है भगत कबीर साहब ने, कहिंदे ने अग दा काम है साड़ना पर कदी अग पानी बनदी देखी जे। ए ठीक है अग पानी नूं सुका के तां भाप बना देंदी है पर अग कदी पानी नहीं बनी। पर गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने जिस सिख दा किरदा शीतल हो गया, जेड़ा बाणी पढ़ पढ़ के अंदरों टिक चुका है, ठंडा हो चुका है, ओदे अंदर गुरु ने इन्नी कु कृपा पाई है कि क्रोध वर्गी अग्नि भी ओदे अंदर आके पानी बन जाती है, ईरखा वर्गी बिरती भी ओदे अंदर ठंडी हो जाती है, काम वर्गी अग भी ओदे अंदर आके पानी बन जाती है। क्योंकि शीतल इन्ना कु हो गया है कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ने ओदे सामने अग नू भी पानी कर दिता है। हजूर ने बाणी विच बचन किया साहब कहिंदे ने कबीर मन शीतल भया, जिथे उन्होंने कहा कबीर मन निर्मल भया उथे शीतलता की गल की, कबीर मन शीतल भया। पर कदों शीतल होया? पाया ब्रह्म ज्ञान, जदो गुरु ने कृपा करके ब्रह्म का ज्ञान पा दिता है। ते अगली पंक्ति है जिन ज्वाला जग जा रहे हो, ज्वाला दरते अग, जिस काम क्रोध लोह मोह अहंकार ईरखा निंदिया चुगली बकीली द्वैश जिन्ने सारी दुनिया नु साड़िया सी, पर कहिंदे ने जदों जपण वाले दे कोल आई अग ते ए भी अग ओदे सामने पानी बन गई, ठंडिया हो गई। जिन ज्वाला जग जा रहे हो सो जन कै उदक समान, उदक दर्थ हुंदा पानी, ए अग उस सिख दे सामने पानी बन गई। भाई गुरदास कहिंदे ने गुरु का सिख जिहड़ा ओ शीतल हुंदा है, ओ ठंडा हुंदा है। ते अगला काम जिहड़ा उन्हां ने कहा केवल शीतल नहीं, एक काम होर भी आ पानी अंदर, जिथे ओ शीतल है ना साहब अगे भाई साहब कहिंदे ने शुद्ध प्राणी, शुद्ध दा अर्थ हुंदा पवित्र करना। पानी विच इक बड़ा वड्डा गुण है, जदों किसी दे तन दे उपर धूड़ पै जाए पानी ओनू भी धो देंदा है, जे किसी दे केसां दे विच धूड़ पै जाए मैल हो जाए जल ओनू भी धो देंदा है, ओनू भी निर्मल कर देंदा है। ते भाई साहब कहिंदे ने जे प्यारिया किसी दे तन दे वस्त्र मलीन हो जाण ते याद रखी पानी ओदी भी मैल कर देंदा है। ते गुरु का सिख पानी दी तरह ही जे पानी मैलियां नू धो के पवित्र कर देंदा है। गुरसिख जिहड़ा अंदरों शीतल हो चुका है जदों ओदी कोई संगत करदा है ओह भी मैलियां नू धो के पवित्र कर देंदा है, ओह भी निर्मल कर देंदा है। शायद यही कारण हजूर ने बाणी विच बचन किया साहब कहिंदे ने गुरमुख कोट उधार दा भाई, गुरु का एक सिख करोड़ा लोकां नू तार दिंदा है पर कदों दे नाम है एक कणी ओ आप नाम जपदा है। ते जदों किसे होर दे अंदर नाम दा किणका टिका दिंदा है ना ओदी कृपा नाल करोड़ा बंदे जिहड़े ने भवजल तो तर जांदे। जे पाणी तू करोड़ा लोकां दी मैल धो सकना है ते याद रखी गुरु नानक बाबे दा सिख होवे पूर्ण ते ओ लोकां दे अंदर दी मैल नू धो दिंदा है। भाई गुरदास होरां दी बाणी विच ना इसे वार नाल मिलदा जुलदा एक कबेते भाई साहब नाल चर्चा बड़े लोग करदे सन ते अक्सर गुरु साहब ना कई वारी प्यारे सिखां दी ड्यूटी ला देंदे सन। कमाई वाले सिख इथों तक पहुंचे सन, मैं एक खिन विचों निकलन लगा गुरु अर्जन साहब गुरु ग्रंथ साहब की संपादना पै कराते ने राम सर लिखारी भाई गुरदास नूं। ते एक सिख ने सवाल किया सतगुरु तुसी

सास सास नानक आराध्य आठ पहर गुण गावा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी कवन बदाई कह सको दे अंत गुनीता कर कृपा

नानक दर सरिता परम सम्मान योग जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो सरवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लै के बैठे हो। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो। करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरां कीर्तन दी समाप्ति ते जो अमृत बचना दा कीर्तन सरवण कराया है धन गुरु अमरदास महाराज हजूर दे मुख तो उचारण कीती हुई अमृत बाणी राम कली राग अंदर आनंद साहिब दी एक पौड़ी का कीर्तन आपने सरवण कीता है। ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले सरवण भी करदे हो पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे। पहला बचन ते कीता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए।

अकाल मूरत अजुनी सैपहं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन वधाई कर सको बेअंत गुणीता

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा तेरे तो ओले कदे ना होसा मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किसे टिकिया होया वा पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती लैणे तो गुरु अंगद बने पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई उन्हें एक शब्द कहा सी दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा इन्हां दा प्रसाद पानी ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने कहन लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामाता होणगियां ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे उत्थे इक शब्द क्या कहन लगे ए बाबे के होणगे बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे ते जोत जड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सवाना जेड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना लोग उन्हां दी पूजा करनगे अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी ते विच विचोला कौन बन गया बाबा बुढ़ा जी पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने लाया गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने फिर साहब ने कहा बुढ़िया मैनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणा विच कर बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा कहन लगे भाई लैणे नूं गुरु अंगद साहब नूं तुसी हुण करतारपुर टिकना नहीं तुसी खडूर चले जाओ बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर आए इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आ के टिके ने इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां मत्ते दी सरां दा हाकम सी जेड़ा चौधरी सी उहदा नां सी तख्त मल इहदी धी सी माता विराई दा असली नाम सी वीरां बाई इहदे सत भरा सन ते लोकी आम तौर ते इहनूं सत भराई भी कहिंदे हुंदे सन इस माता विराई दा आनंद कारज खडूर दे जिमीदार नाल होया चौधरी नाल होया माता भराई ने गुरु अंगद साहब दे पिता बाबा फेरू मल नूं सक्का भरा बनाया सी ते गुरु अंगद साहब माता विराई दे घर आ के ना पहला गुरु नानक साहब दे दर्शन भी कीते सन अज जदों गुरगद्दी जोत मिली माता विराई दे घर आए जिहड़ी रिश्तेदारी करके भैण भी बन गई वैसे भुआ लगदी सी पर वीर शब्द इन्हें गुरु अंगद साहब लई भी वरत्या पर जिदन गुरु जोत मिल गई उदन वीर नहीं उदन गुरु नानक जाने अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए प्रेम दा विछोड़े दा सल सी बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता अगों दरवाजा चिण दिता ते इतिहासकार कहिंदे ने संगत बेबल हो गई जेड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिसे नहीं एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है पर गुरु अंगद साहब हैन किथे माता विराई नूं कहा तू दसना नहीं किसे नूं गुप्त वास हो गए सिख संगतां थां थां ते गईयां भाई अजिता रंधावा इहदे मन विच भी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होवे जदों संगत नूं गुरु ना लभिया उस वक्त एक ने क्या कहन लगे भलियो भटको ना चले दो बाबे बुढ़े दे कोल रमदास ओनू गुरु नानक एक बचन दे के गए।

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारां आप जियां ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने दी बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास दी और बाणी दी विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे हुए है। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नू होया है। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे, जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े आ, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते है, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनिया बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना है। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना है। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पै आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे। ते ओ विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि ओदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या ओदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज यह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर ओदी सरां दे अंदर उन्होंने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कह लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी ओदे घर तो बाहर निकल के ओदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख की छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित का नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी ए। ए पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियों के कोलों लंघिया, ते ज्योतिष विद्या का माहिर किन्ने उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦਈ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜਿਹਾ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ? ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ,
साहब कहते ने जो जन्म होया ना तो बचपन में एक आस है अजे कुछ दिन खेडन दे ने खान पीन दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आनी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नू एक आस है कि पुत्र धियां वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आना है ते गुरु ग्रंथ साहब कहते ने उस बंदे नू मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना है जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू ता परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डडरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इक्को ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उहने इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की हुई फसल केवल कट्टी जांदी है पक्की तो बाद की करां।

उस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़ने हैं कि मैं रब तो विछड़िया वा, मैं गुरु तो विछड़िया वा, ते एक आस करियो कि परमार्थ दा एक कदम आपा ने पट ले। दुनिया नू ता ए भी पता नहीं असी रब तो विछड़िया कि नहीं, लोगों नू ता ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नू एनी समझ पै जाए ठोकर वज के मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया, जिस बंदे नू रोग दा पता लग गया वो वैद नू भी जरूर लभेगा। जिस बंदे नू ए ही पता नहीं मैं रोगी हां उहने वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नू एनी कु समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया है, ते गुरु कृपा करे हर बंदे नू ए समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच पवित्र बचन कहा है, कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना, उन्हां ने उस वक्त दे समय नू मुख रख के बचन उचारिया। कहिंदे ने शाम पैंदी है, व्यापारी भी अपने टिकाणे ते रात नू आराम करदा है, तुरन वाला राही भी किसे सराम विच रुक जांदा है, जिमीदार भी शाम नू थक के घर आ के टिक जांदा है, दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नू घर आ टिकदे ने। पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नू सारे आराम करदे ने, पर एक आवाज रात नू मेरे कन्नां विच गूंजदी है, ते सोचना वा ए कौन है जिन्हू रात भी आराम नहीं, ए रात भी उची उची पुकारदा है। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी सेध नू मैं गया ते की देखिया, एक चकवी बड़ी उची उची पुकारदी पई है। पता नहीं कुदरत दा एक नेम है, जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने, दरियावां दे किनारियां ते पंछी रहिंदे ने, जदों रात पैंदी है चकवी दरिया दे खब्बे नू चली जांदी है, चकवा सज्जे नू चला जांदा है, एक दूजे नू पुकारदे ने, पर हैरानगी दी बात एक दूजे दी आवाज सुन के एक दूजे नू मिल जांदे ने, मिलाप हुंदा इन्हां दा दरिया विच उड़निया, खब्बा सज्जे नू चला जांदा है, सज्जा खब्बे नू चला जांदा है, सारी रात चक्कर करदे रहिंदे ने पर मिलाप हुंदा नहीं। बाबा कबीर कहिंदे ने मैं चकवी नू देखिया रात उची उची पुकारे, मैं क्या सबर नाल टिक जा, सारी दुनिया आराम करदी तेनू चैन नहीं। ते चकवी ने कहा जिदा प्यारा विछड़ जाए ओनू टिका ते चैन किथे, ते कहिंदे ने मैं ओनू उत्तर दिता चकवी देख सूरज चढ़ने, सूरज ने तुहाडे लई मिलाप का संदेश लैके आउणा है, एक रात का विछोड़ा दिन चढ़ना है तां मिल पैणा है, कि एक रात का विछोड़ा तेरे तो जरिया नहीं जांदा। ते उस वक्त चकवी का उत्तर सी भगत याद रख तू एक रात की गल करने, जिन्हां दा प्रीतम नाल नेह पै जाए वो एक खिन भी ओदे तो बिना नहीं रह सकते, मैं सारी रात पुकार दी रहांगी जिन्नी देर तक प्यारा मिलदा नहीं। ते बाबे कबीर ने बाणी विच बचन किया, कह लगे बंदे जदों मैं चकवी वल देखना वा ते तेरे वल झाती मारना, मैनू तेरी उम्र ते बड़ा अफसोस हुंदा है। पुछिए जी क्यों, भगत जी कहन लगे चकवी एक रात विछड़दी है, ए भी पूरा यकीन है कि सूरज चढ़ना है ते प्रीतम ने जरूर मिलना है, एक रात दे विछोड़े तो बाद ओदा मिलाप इवाश है, ते एक रात ओनू चैन नहीं, तू ता मना कई जन्मा दा प्रीतम तो विछड़िया है, ए भी कोई भरोसा नहीं इस जन्म विच मिलना है कि नहीं, तैनू चैन किवें ने, कदी पुछ जिन्ना ने प्रीतम नू पुकारना वो चकवी दी तरह फिर टिक दे। भगत जी ने बचन किया, कह लगे कबीर चकई जौ निस बिछड़ै, निस दर से रात चकवी रात नू विछड़ दिए, आए मिले प्रभात जो नर विछड़े राम स्यो, ना दिन मिले ना रात जेड़े प्रीतम तो विछड़ गए उन्हां दा कदी भी मिलाप नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा बजुर्ग बाबे नू एक बोली मार दिती, ओ देख बाबा इन्ने जन्मां तो बाद मनुखा देही मिली अजे भी गुरु वाला नहीं बनिया, उस बोली ने टिकन ना दिता। जे बाबा अमरदास रात नू मंजे ते पैंदा है कन्ना विच आवाज पैंदी है हे प्रभु मैं इस नगुड़े दी संगत कीती, जे कुछ खान लगदा है आवाज पैंदी है देख तेरे केस कालियां तो चिट्टे हो गए, अजे भी नगुड़ा ना इनू खाना चंगा लगदा है ना सौना चंगा लगदा है। भाई वीर सिंह लिखदे ने तीन दिन ते तीन रातां इस बाबे ने बिल्कुल आराम नहीं कीता, सारी रात इन्हें तुरते रहना, अखां विच नीर भरना, कदी रो पैना।

ते गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र इस करके पाए ने कि गुरु नानक दी फुलवाड़ी नू पशु बिरती वाले तबाह ना करना चाहन, इस करके सतगुरु ने एक वार ला दी। भाई गुरदास ने वचन किया, कह लगे खेती वार जो टिंगरी किकर आस बास जो बागे, ते उस वक्त केंद्र ने सप लपेटे चनना बुआ जंदा कुत्ता जागे, चंदन नू भी सप चंबड़े ने ओदी राखी दे लई, असी बुवे अगे भी जंदरा मारने कुत्ता रखने। इसे तरह कह लगे इस फुलवाड़ी नू बचान दे लई शस्त्रां दी जरूरत है। खैर साध संगत आपां अगे तुरिए, ए लोग जालम जुलम करते रहे। जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का समा आया ते उस वक्त मेरे दाता जी आनंदपुर की धरती ते ने इन्ना कु जुलम वध गया कि जालम की तलवार ने अनेकां दे सिर ला दिते, जन्यू ला दिते, टिक्के मटेन की कोशिश की। उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विच इन्हां ने फरियाद की, महाराज तू किरपा करे ता मंदर विच दीवे बलदे रहणगे, जे तू किरपा करे ता जन्यू तिलक रहेगा, जे दातिया तू बख्शिश ना कीती ना तिलक रहने ने ना जन्यू रहने ने ना दातिया मंदर विच आरती उतारन लगे दीवे बलदे दिसने। एक अदीब ने बड़ा सोहना लिखिया, वह कहना मेरे सतगुरु ने भरोसा दे के तोरिया, कह लगे यकीन करो तुसी घरां नू चले जाओ, मैं अपना सर दे के तुहाडे सत नू बचावांगा, ते जेड़े कहिंदे तुसी साडे दीवे बुझ चले ने, मैं तेल दी थां ते अपना खून पा के भी तुहाडे दीवे बल दे रखांगा। उस अदीब ने बड़ा सोहना बचन लिखिया, कहिंदा क्या सतगुरु बचियो घरी जावो, सिर दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे अंदर, तेल अपने लहू दा पांगा मैं, इस दीवे नू बुझ नहीं मैं देंदा। उस वक्त कहिंदा जदों मैं अज झाती मारना, कोई पुजारी दीवे रख के थाली विच आरती उतारदा, लोग कहिंदे ने दीवियां विच तेल बलदा, वो कहिंदा नहीं, वो लिखदा पाया देश दीआं जड़ां विच तेल, उसने खून उसने, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। कह लगे हिंदू मंदरां दे दीवियां विच हुण वी लहू तेग बहादुर दा बल रहा, अज तक ओ गुरु तेग बहादुर दा मानो खून पिया बलदा है, जेड़े ओ दीवे कायम ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत हो गई, भाई जैता जी शीस लै के कीरतपुर आए, धन गुरु कलगी वाले ने अपने पिता दे शीस नू नमस्कार कीती। साध संगत उस समय कुछ समय तो बाद मेरे कलगीधर स्वामी ने चेत सुधी एक नू सारियां संगतां नू इकट्ठा कीता, ते उस वक्त क्या सिखो हुण एक दूजे ते रंग सट्टन दा समा नहीं, एक दूजे ते चिक्कड़ जा आ पानी सट्टन दा समा नहीं, अज समा आ गया कि तुसी अपने आप नू शस्त्र बद्ध करो। देखो जालम ने इष्ट ते वार कीता, दिन रात जुलम पिया वध है, हुण रंग सट्टन नाल जालम ने वापस नहीं मुड़ना, तुसी शस्त्र विद्या दा इन्ना कु अभ्यास करो कि जालम दे मुंह नू तुसी। मैं अर्ज कीती है होला महला केवल शस्त्रां दे अभ्यास दा एक प्रतीक है। वैसे भाई नंद लाल ने यह भी वचन किया, कहिंदे ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे हाथ विच इक पिचकारी है, उन्होंने बड़ी सोहनी गल की, कह लगे जहे पिचकारी है पुरजाबरानी, हे सतगुरु तेरे हाथ विच इक पिचकारी है बख्शिश दी, ते जेड़ी पिचकारी केवल नाम से अमृत जल रंग नाल भरी है, जाए पिचकारी पुरजाबरानी। ते अग्यो लिख देने के हर दे रंग रा, जिस बंदे दा अंदर नहीं रंगया खुश रंगो बू करद, सतगुरु तेरे हाथ की पिचकारी जड़ी है जेड़े अंदर नहीं रंगे उन्हां अंदरां नू धो के तू नाम का रंग चाड़ देने। अगे फिर लिखदा भाई नंद लाल साहब कहिंदे ने, कह लगे गुलाल आप सानिए दस्ते मुबारक, बड़े कमाल की गल कही गुरु गोबिंद सिंह, तेरे हाथ दे विच एक बख्शिश का रंग है, बख्शिश का गुलाल है, गुलाल आप सानिए, आप सानिए का अर्थ उड़ना, जदों तेरे हाथ विचो बख्शिश का गुलाल निकलदा है दस्ते मुबारक तेरे हथा विचो निकलदा है। कह लगे जमीनों आसमान जमीन

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइए, पाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अमेओ चुआइए। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया, पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। यह शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुने, बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है, इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी, ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया, शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं, ते इन्नी टेक के समाधि लाई दिए कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जी, ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने, अमवे दे फुल पाए ने, पहला एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बखल फिट कीता, उहदे विच नाली लाईए, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया, ते थल्लों अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं, उह रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां, ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो उहदा नशा, उहदा सरूर, उहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विच्चों शराब नहीं एक रस अमेओ चवाई है एदे विच्चों अमृत दियां बूंदा डिगदियां एक रस अमेओ चवाई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया है नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एनस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एनस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओह विचार रहा है कि मेरे अपने अंदर ही वह शब्द सुनाई दे रही ए शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दीए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी ते सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी इक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणे मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नादर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय कर दे ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दशी पासी धामदा पे है तन धुपदा पे है पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे है पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरियां ने ते सूरज वल पानी पै सट रहे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लहिंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लहिंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नू क्यों? कहन लगे कुछ तो सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्नी कु दूर ने? उन्होंने करोड़ा को दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झत्तन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल का उत्तर दे दिता, तुसी पुछया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे हां, ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बद्दा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बज्जा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो इनी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे तौरां विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, इन्ने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसी ने सोची नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती, ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जेड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा है, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नू दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नू सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ एक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया है। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪੋਰ ਅਪੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵਾਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਹਿਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

0: की पावत और की सेव सुहासना जी को दान दियो इन्हीं को पलो और आन को दान ना लागत निको आके फल इन्हीं को दियो और जग में जस और दियो सब हुई को मैं तेनु की दियागा मो ग्रह में तन ते मन ते तन ते सिर लो मो ग्रह में तन ते मन ते सिर लो तन है सभी इन्हीं को जदो क्या मेरा सब कुछ तेरे हाथ जोड़ के क्या मेनु अमृत दे उदो अमृत दी दाह शकन लगे उधरों फिर एक आवाज उठी हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला नानक निरपो निरंकार विच सिद्धा खेला गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला अज गुरु शकदा प्यो लोको पीवो पौल खंड तार हो जन्म सोहेला आवाज कह रही सी वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला उस आवाज ने ब्रह्मांड तक अपने शब्द नु पहुंचाया आओ गुरु के सिखो पिछे वैसे मैं संखेप जा चलिया भावे कई महीने की विचार आप करते रहिए सवेरे अमृत का बाटा तैयार होना पंजा ने गुरु की हजूरी विच तैयार करना स्वाद ताए इना दिन हो गया सारिया नु जोर मार दिया कोमल साहब जी बाबा जी कीर्तनिये कथावाचक सकत्र साहब पूरा तान लाया पे ते जिथो मैं गल अज आरंभ की सी परसों जदो संपूर्णता करके कहोगे दाता जी सेवा थाए पायो पर गुरु कहेगा गावया सुनिया तिन का हर थाए पावे जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी आग्या मान लईए अमृत दी दात लैके अंदरों अमृत नाल जुड़ जाइए कल नू असि धन गुरु अंगद साहब दे जीवन दी विचार करनी क्योंकि परसों मेरे सतगुरु दे पुरब नू पूरे 500 साल हो जाने कल असी घंटा जितना भी समा प्रबंधक वीरो लिखणगे केवल गुरु अंगद साहब दा जीवन सांझा करांगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु
1: महान विकास कदम जीते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है उन्होंने
2: सतनाम।

परमात्मा ने शरीर दिता है, जैसे असि कर्म करने हैं, ओ कर्मा दी बेल, ओ कर्मा दी बीज, ओ कर्मा दी फसल एक दिन इंसान नू कटनी पेगी। ते जिहो जिहा कर्म ने बाबा फरीद साहब ने तो मेहर भी कीती है, कहन लगे देख के लोड़ै दाख बजूरियां, किकर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा पैंदा लोड़ै पट। जे तू कर्म माड़े कर बैठा है फिर की कोई रस्ता है कि गुरु दे दर ते असी बख्शे जाइए? आपां ए तां प्रमाण देई जांगे भी तेनू कीते कर्मां दी सजा मिलेगी। हुण मन लो बंदा ए तैयार हो गया, मैं कर्म माड़े कर बैठा, कोई मेरे वास्ते बचा दा राह है? ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़ियां सोहणियां उदाहरणां दित्तियां। प्यारिओ, कदी गुरु तेग बहादुर कृपालू जी दे बचन पढ़ो, कहिंदे ने खे परमात्म देव अब मैं कौन उपाओ करूं, हुण मैं की उपा करा, कर्म मैं माड़े कर बैठा। जे बिद मन को संसा चूकै भव निद पार परूं, मेरे मन दे शंके दूर हो जाण, मैं भव सागर तो तर जावां। तुसी गुरमुखो तवज्जो बख्शो, सिर मैं दो तुकां लईयां ने, कर्म करने आ बीज ने। जे मन लो अज तीकरा माड़े कर्म कीते ने, अज ही मन समझ जा मना तू धर्म वाले पासे तुरने, ते की पिछले कीते हुए कर्म दगद हो जाणगे, पिछले कीते हुए कर्म खंडन होणगे। हजूर ने बख्शिश कीती अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूकै भव निद पार परूं। अगे बचने जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं मन बच क्रम हर गुनी गाए, ये जी सोच धरूं गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पस जो उदर भरूं कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब खौ पतत तरूं। कर्म मैं कर लेने पर मेरे मालका तू अपने बिरद बाणे दी लाज रख, ता मेरे कर्म कटे जा सकदे ने। इथे एक भगत महापुरुष जिन्हां दे गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन ने, देखो उसने कमाई कीती, कर्म भावे माड़े सन पहला पर सिमरन करन तो बाद इक सानू मार्ग दस के गए। भगत सदना जी दा बचन हुंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच, उन्हां दा कर्म की सी? कसाई पुणे दा काम करदे सन। जदों रब दी परमात्मा दी भगती वल चले, साडा समाज कदी किसे नूं नहीं जे बख्शदा। एक गल ध्यान विच रख के चलियो, गुरु नूं मिलना है, रिश्तेदार समाज ते परिवार दा ध्यान रख के चलोगे खुश हो जाणगे, ये कदी भी खुश नहीं जे होने। जे किसे ने खुश करना है ते अपने साईं नूं आप रिझाइए, जां दुनिया खुश होवेगी ते जां फिर रब खुश होवेगा। एक पासे रहना। बाबा कबीर साहब नूं किसे ने बचन कहे सन, कहन लगे लोग तुहाडी बड़ी निंदिया करदे ने। कहन लगे कौन? के सारा संसार। कहन लगे जिहड़े निंदिया करदे ने इह किहड़े ब्रह्म ज्ञानी ने, इन्हां ने रब नूं पाले। उन्हां दे दो श्लोक हुंदे ने, कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, सोचिया सी विद्वान बन जांगा बड़ी चंगी गल है, पढ़बो सो भल जोग, पर मन ने क्या पढ़ाई नालों चंगा जोग दा आखरी अर्थ मिलाप। मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बो सो भल जोग, भगत ना छाडो राम की भावे निंदो लोग। उन्हां कहा भी जे लोग इन्ना माड़ा कहणगे ते क्योंकि साडा मन थिड़क जांदा है। जदों कोई माड़ी जी गल समाज विच करदा है ना, असी इक्को दम छलक जाने आ, थिड़क जाने आ। प्यारियो, रब ते भरोसा साईं ते यकीन करके तुरियो, राह उन्हां नूं मिलदे ने जेड़े अपने सीने गुरु नूं अपने अंदर गुरु नूं समर्पित करके चलदे। लोगां कहा तेरी निंदिया, कबीर जी दा अगला श्लोक कदी ना भुल्यो। कहन लगे कबीर लोग के निंदा बपड़ा की मेरी निंदिया करनगे, जे मन नाही ज्ञान राम कबीरा रव रहे अवर तजे, सब काम लोग की निंदिया करनगे जिन्हां नूं अब आप रब बारे पता नहीं। कर्म असी माड़े कर बैठे हां मान लो, ते हुण उन्हां कर्मां नूं असी पश्चाताप करके कह लईए। पहली गल, केड़े कर्म ने जेड़े निखिद ने? दो तरह दे कर्म ने, एक बिद ने एक निखिद ने। बिद दा अर्थ हुंदा करन जो कम, ते निखिद दा अर्थ है जेड़े कम नहीं करने। जे गुरमत दी बोली भी समझना, रहत दा मरत है, मतलब है बिद कर्म एक करने ने, ते करैत दा अर्थ है निखिद कर्म कदी नहीं करने। भगत सदने ने रब वाले पासे तुरिया, लोकां ने बख्शिया ना, सारियां ने इको गल कही, कल तक कसाई सी अज बन गया वड्डा भगत। गुरमुखो, एक कदी भी भुल्यो ना,

जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।